मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर एवं एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि तदनुसार 30 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुनेंगे विविध भारती के

पर हित नित उर्मे अंकित हो, सब वैर भाव से वंचित हो। जो हर अंधियारा दूर करे, वो अनुपम ज्योति जला जाए। हे ईश्वर, हम वो पथ चुने सदा, जो पथ मानवता को जाए।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस का।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। माँ गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा माँ गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। भाइयों, कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे बाजरे की उन्नत किस्म के बारे में। और फिलहाल देखें कि भाई अपना मौसम की अगर बात करी जाए तो मौसम में भाई तब्दीली है, तेज़ हवाएं, गरज चमक के साथ लगभग बूंदाबांदी का मौसम। तो भाई जड़े भी हम बिजाई करा हाँ, एक नहीं है कि हम बाजरे की कर रहे हैं कि तक कपास की है, फिर और अन्य फसल लगा रहे हैं, कोई चारा वाली लगा रहे हैं या फिर कोई। तो मौसम का मिजाज हम ज़रूर देख के चलें, क्योंकि आज के दिन जो देखे हैं कि खेती बाड़ी में खर्चे बहुत हो जाए हैं, महंगे बीज हैं, महंगा भाई तेल पानी है अपना, तो देखे हैं कि ज़मीन तैयार होने दियाणी भी टाइम लग गए है। कितने पानी पात के साधन भी से हैं भाई, कितने भाई ट्यूबला का पानी देखे भी पड़े करे हैं, कितने नहरी पानी है। तो खर्चे आज के दिन बहुत से ज़्यादा हैं। मौसम की बात यह है कि ध्यान में क्यों रखा हम, क्योंकि बाजरा ने देखा करें कि भाई जब बिजाई करा हाँ तो थोड़ी बहुत रामबड़ में अगर आ जाए है तो फिर दिक्कत आओ है। और फिर टेम भी भाई नू देखे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फिर पछेतका होता चलिया जाए, किसान भाई ने दोबारा खबात करनी पड़े है, दोबारा बांध करना पड़े है, दोबारा बिजाई करनी पड़े है, बीज लेना पड़े है। तो मौसम का मिजाज देख के हम भाई मौसम साफ़ सुथरा खुला हो जब हम बिजाई करें, ताकि गणा लागू सेवा का हिसाब हम रख लें भाई नू देखा हाँ कि पर्याप्त ताल है। तो लगभग अपना भाई अमूमन मान्या करें कि भाई दो ढाई आंगण अपना जो लागू है इतना करें, ज़्यादा गहरा ढूंढाई पाम गिर दिया हाँ तो कई दिन लगा दे है, फिर कितने मौसम बदली हो जाए तो फिर समस्या आ जाए किसान भाई के। तो भाई बाजरे की बीजने का समय भाई आ गया है, और उन्नत संकर किस्म की अगर बात करी जाए तो HHB 50 है, 60 है, 67 है, ये संशोधित किस्म है। इसके अलावा HHB 94 है, 117 है, और HHB 146 है, 197 है, 216 है,

0: एक एकड़ के लिए भाई 1.5 तले की 2-1 किलोग्राम बीज काफ़ी रहे है बाजरे में। खेत में सही उगाव के लिए भाई बिजाई खुड्डा में इस तरह से हमने करनी है, बीज के ऊपर लगभग 2 सेंटीमीटर अधिक मिट्टी ना आवे। तो यह है कि भाई अपना 1.5 2 आंगल 2 2.5 आंगल से नीचे नहीं जाने दी, लागू नहीं जाने दी हम। थोड़ा बाजरे ने पर्याप्त आलो तो सिवा बुना ठीक रहा है। और 2 खुड्डा का फासला 45 सेंटीमीटर रख के चलना है, और बरसात के मौसम में मेढा पर बिजाई करना अच्छा हो है। इस तरीके से बिजाई के लिए भाई विश्वविद्यालय के शुष्क खेती अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित मेढा पर बीज मिलने वाला जो हल का प्रयोग हम कर सकें इसमें। अगर असिंचित संकर बाजरा इस महीने के अंत में बोया जा सके है, तो उसमें भाई 16 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि लगभग 35 किलोग्राम यूरिया बने है अपनी, वह काफ़ी पर्याप्त रहा है बिजाई के समय हमने देनी है। यदि खेत में फास्फोरस की मात्रा मध्यम दर्जे की कम है, तो इस जमीन में 85 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से देवा। रेतीली और हल्की जमीन में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट बिजाई के समय हमने जरूर देनी है। और सिंचित क्षेत्र में संकर बाजरे में बिजाई के समय भाई 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 1 किलो के हिसाब से हम दे देवा तो बढ़िया रहा है। बिजाई के समय 55 किलोग्राम यूरिया, ताकि 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति 1 किलो के हिसाब से यह मात्रा बन जाए है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार मात्रा जो है हमने पौधा की छटाई के बाद में छिट्टी निकलते समय हमने।
1: ये थी कृषि की बातें, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबन्धने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसाङ्ख्यिक्याः रक्षणाय महत्त्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः

0: पक्षयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयमन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतम स्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 92,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता, यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुख योजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृता अस्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7-0 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर

चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

युवाओं का दैनिक आयोजन कार्यक्रम युवा संसार का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:30 पर, जिसमें आज का विशेषांक रहेगा रोजगार समाचार।

देर शाम 7 बजे कार्यक्रम ग्रामीण संसार में आप तक पहुंचेगा। पत्रों पर आधारित हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में बातचीत का विषय रहेगा आज ज्वार व बाजरे की चारे के लिए काश्त का प्रथम प्रसारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कन्नौज। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम खेत खलिहान में चर्चा का विषय रहेगा गहरी जुताई का महत्व।

दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी। प्रातः 8:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार महावीर सिंह मीर को।

फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 7:30 पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 1:10 पर।

कार्यक्रम सबरस प्रसारित होगा प्रातः 9 बजे। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे कलाकार हीना राजपूत को। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो साथी सोनिया शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कर्तव्य निष्ठ पत्रकार अपना कर्म निभाते, वे भोर की प्रथम किरण से जाग जाते। रात्रि के अंत तक सब खबर खोज लाते, निष्पक्ष भाव से हम तक सूचना पहुंचाते। बिना किसी से डरते न ही वह सहमते, कठिन स्थिति में जाकर वृतांत लेते। दिन रात घूमते, मौसमों के थपेड़े झेलते, हमें जानकारियां मिले वे सदा जुटे रहते। सबकी खट्टी मीठी कड़वी बातें सुनते, पर देश हित सर्वोपरि भाव से डटे रहते। ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे या बड़े, बहुजन हिताय मन भाव भेद न करते। धर्म मजहब से ऊपर उठकर बातें करते, वे कब, क्या, क्यों, कहां, कैसे सब कहते। नभ जल थल कि सब हाल चाल ले आते, अकाल महामारी युद्ध क्षेत्र में भी चलते। राष्ट्रहित में वे नित नए आयाम वे गढ़ते, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी सदा सजग रहते। जी हां श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस, जो कि आज के ही दिन यानी 30 मई को मनाया जाता है। और हिंदी पत्रकारिता के योगदान को सराहने और पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आज का दिन हम मनाते हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। कहते हैं समाज को आईना दिखाने का काम पत्रकार करते हैं। पत्रकारिता में देश और समाज के मुद्दों, घटनाओं और समाचारों को देश भर के लोगों तक पहुंचाया जाता है और उन्हें अवगत कराने की कोशिश की जाती है। इस पत्रकारिता को बढ़ावा देने और सराहने के लिए हम आज का दिन यानी कि 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस हम सभी मनाते हैं। साल 1826 में 30 मई के दिन ही हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड निकाला गया था, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ला थे। इस पत्रकार के पहली बार छपने के दिन को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस का दिन मान लिया गया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में हुआ था। यह अखबार साप्ताहिक था और हर मंगलवार के दिन पाठकों तक पहुँचता था। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम सभी को यही बात कहते हैं कि जो आज के दिवस का जो महत्व है, हिंदी को केवल एक साहित्यिक भाषा के रूप में ही नहीं, बल्कि जन संचार और जन जागरूकता के सबसे प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित करने में निहित है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी प्रेस ने

जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाने और उन्हें एकजुट करने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ये बात हम सभी जानते हैं। और आज का जो दिन है, पत्रकारों का जो योगदान, पत्रकारों ने जो योगदान दिया है, यह दिन उन साहसी पत्रकारों को श्रद्धांजलि और सम्मान अर्पित करता है जिन्होंने ब्रिटिश सेंसरशिप और सीमित संसाधनों के बावजूद सच्चाई को सामने लाने के लिए संघर्ष किया। आज का दिन पत्रकारों को निष्पक्षता, सामाजिक जिम्मेदारी और जनहित के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाता है।

श्रोताओं, भारत के सभी राज्यों की अपनी अपनी एक अनूठी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान और लोक परंपराएं हैं। भारत के सभी राज्य भारत को एकता के सूत्र में बांधते हैं, इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी। और इन्हीं में से एक राज्य है गोवा राज्य, जिसका स्थापना दिवस हम आज मना रहे हैं। हर साल 30 मई को, यानी आज के ही दिन मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1987 में गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश से निकालकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जिससे यह भारत का 25वां राज्य बना। भारत के बाकी हिस्सों के आज़ाद होने के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। 19 दिसंबर वर्ष 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। आज़ादी के बाद वर्ष 1987 तक गोवा दमन और दीव के साथ मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित होता रहा। और 30 मई, यानी आज के ही दिन वर्ष 1987 को गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से गोवा को दमन और दीव से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और हम आपको बता दें कि गोवा के पुर्तगाली शासन से मुक्त होने की याद में हर वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और आज हम मना रहे हैं गोवा का स्थापना दिवस, यानी 30 मई को आज के दिन हम गोवा का स्थापना दिवस मनाते हैं। और श्रोताओं, अपने हर राज्य की हमने बताया, जैसे कि अपना अलग अलग खान पान होता है, पहनावा होता है, त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं, इन सभी से हमारी भारत की संस्कृति बनती है।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 8:15 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता।

0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार

0: भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders...
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: This is official visit and we look forward to welcoming the President of Myanmar.
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3rd स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा।

0: इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy

0: 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं महावीर सिंह मीर।
2: किस्सा है हीर रांझा, जब हीर अखन के साथ चलने लगती है तो रांझा क्या कहने लगता है, क्या कहता है?

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे महावीर सिंह मीर, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं संगीत फिल्म के इस गीत के साथ। इस गीत को आवाज़ें दी हैं अनुराधा पोर्टवाल और सुरेश वाडकर ने। संतोष आनंद की शब्द रचना है और संगीत बद किया है आनंद मिलिंद ने।

0: अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में जीत फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। शब्द रचना है समीर की, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर्मी जीत फिल्म से भी आपने गीत सुना। अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में साजन फिल्म से गीत हैं, समीर के बोल हैं और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

कच्चे धागे फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में ये गीत हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, नुसरत फ़तेह अली खां ने संगीतबद्ध किया है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल

अनुराधा पोडवाल, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ में बादल फिल्म से आपने गीत सुना। दिल है तुम्हारा फिल्म का शीर्षक गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक और कुमार सानू ने। समीर के बोल हैं, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में दिल है तुम्हारा फिल्म का शिव श्रवण ने कविता कृष्णमूर्ति मनहार और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में सौदागर फिल्म से आपको गीत सुनवा रहे हैं। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है सौदागर।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 10:05 पर समाचार होंगे अंग्रेज़ी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लयान 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। राष्ट्रपति के रूप में ऊ मिन आउं लयान की यह पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। ओडिशा में आज मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी। और खेलों में हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल उसने राज

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:10 और 8 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन व साथ ही पहली प्रसारण सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ दोपहर 12:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हमारे कार्यक्रम जारी हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ जोन AIR पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:40 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में प्रस्तुत है लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी।
1: कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी सुनने वाले सारे बाण भाइया ने बलजीत भाई की राम राम। भैया शनिवार है और बारी है कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी की। तो भाई कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बलबीर सिंह बोबला की गाई उड़ रागनी थे। पसंद भेजनी है आप सब फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर पांडा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर पांडा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया। गांव लुदेश्वर से हैं पप्पू राम गाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका देवी, साक्षी, रुचिका और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव बलियाली से हैं दर्शनलाल बंसल, सुदेश राणी, प्रवीण कुमार, ममता राणी, कमल कुमार, गर्विश, तमन्ना और इनका समस्त परिवार। गांव चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, प्रयाग, प्रियांशी, विवेक, प्रीति और इनके बहुत सारे साथी। लाल मस्जिद भिवाणी से हैं संयम पोपली, दृश्य, समर, परवीन, अमित, ज्योति, तुलसी, गीता, दीक्षा, निश्चित रहेजा और इनके बहुत सारे साथी। गांव कायला से हैं प्रकाशन बोकल, पुनीत कुमार, अजीत, संदीप, सक्षम, मुनीलाल, राम कुमार, प्रिंस और इनके परिवार के सभी सदस्य। बटिंडा रोड डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और इनके बहुत सारे साथी। ये चिट्ठी आई है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ राजस्थान से। पसंद भेजने आई हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी, जे एस नायक, शोभा नायक और इनका समस्त परिवार। तो सुनो बे बलबीर बोबला की गायो ये रागनी।
2: उधर से पवन पक्षियों की बात सुनके और अंजना के पास पहुंच जाता है। अंजना को स्वागत देके वापिस आ जाता है, लड़ाई करने चला जाता है। और कुछ दिन के बाद जब पवन की माँ अंजना की सास अंजना के पास जाती है और उसको गर्भवती देख के क्या कहती है?

0: और वे कार्यक्रम की अगली पेशकश रहेगी अजीत सिंह व साथियों की गायी और रागनी की पसंद भेजनी आप सब गांव पांडू पिंडारा से हैं बादल सिंह गिल, कमलेश गिल, टीनू, प्रीति, डॉक्टर अंकित व डॉक्टर वाणिका गिल। गांव लवारी जाटू से हैं रामपुर शर्मा, हरिराम शर्मा, हरिकृष्ण, साधुराम, मदन सिंह, नौरंग, हरिराम प्रजापत, आवाज सिंह बड़सीवाल, शेरा रामदारी शर्मा। गांव शिवाड़ा भिवानी से हैं दयाराम शर्मा, जापान शर्मा, ऋषि और इनके बहुत सारे साथी। गांव फरासी से हैं राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार, सौरभ। गांव द्वारका से शमशेर सिंह और इनका समस्त परिवार। गांव दौड़ से हैं श्रीराम चहल, वीर सिंह, कलम फौजी, हरिचंद, दया किशन बिरागी, पंडित महासिंह, जिले सिंह जांगड़ा, रामपाल, रामहेर और मास्टर जिले सिंह। गांव अजायब से हैं जिला रोहतक में ऋषभ देवनैन, सुबेदार मामन सिंह, सावित्री देवी, रिया, सरस, नरेंद्र, दवित, अंजलि, सागर, वीरेंद्र और इनका समस्त परिवार। दुर्गा कॉलोनी आशीष से हैं राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू और इनका समस्त परिवार। लोको कॉलोनी लुआरू से हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और लक्ष्मी देवी। डेरा सच्चा के नज़दीक गांव अली मोहम्मद से पसंद भेजनिया हैं चिंटू स्वामी, अमन, अंजना, बुलबुल, मैनपाल और इनका समस्त परिवार। तो सुना अपनी पसंद पर अजीत सिंह और साथियों की गाई और ये रागनी।
1: वो कहे बोल दर्द के जख्म कर दे के

0: और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति रहेगी बलजीत सिंह पेटवाड़ी और साथियों की गायो रागनी की। पसंद भेजिए आप सब गांव चौटाला से दारा पंडित संजय शर्मा, दीवानशु जोशी, बुलबुल जोशी, पुनीत पंचारिया, गांव जिंजर कला से हैं माशे सतबीर शर्मा, कौशल्यावाला और इनका समस्त परिवार, कस्बा जुलाना से हैं पंडित महावीर शास्त्री व इनका समस्त परिवार, गांव बागौट जिला महेंद्रगढ़ से हैं प्रकाश अम्बावत, सुबेदार खेमचंद्र, जयदयाल, ओम प्रकाश, बलबीर सिंह, वेद सिंह, नंद किशोर और इनके बहुत सारे साथी, गांव लाठ से हैं केशव, नमन, अनवी, अवी, पंडित कपूर सिंह कौशिक, कृष्ण कुमार, राजेंद्र, खेतुराम, मांगेराम प्रजापत, जय भगवान, यशवंत, बिलू सुपारी, रमेश मास्टर, अतुल मास्टर, राज सिंह और मास्टर सतीश व इनका जो इनके बहुत सारे साथी, गांव बाणाब्राम नान से हैं मेघराज शर्मा, गौरव, सौरव, विजय, जितेंद्र, अजय, जोगेंद्र और इनके बहुत सारे साथी, गांव बिरोली से हैं सुरेंद्र सांगवान, अंकित, सचिन, पवित्र, पावनी, अमन, नीरज, मोहित, करमपाल और इनके बहुत सारे साथी, गांव रामराय से हैं गंगा सिंह प्रधान, उषा रानी, विक्रम सिंह, परविंदर, विजेंद्र, सीमा, पूजा, रिंकी और इनके बहुत सारे साथी। तो सुनो वे अपनी पसंद पे बलजीत सिंह पेटवाड़ी और साथियों की गायो ये रागनी।
1: खिली चंद्रमा सी शान होई रुसनाई रे

और वे कार्यक्रम के आखिर में सुनवाओगे कि हरियाणवी फिल्म छैलगाबरू का गीत। गायिका होंगी सविता साथी और उनकी सखियां। प्रश्न भेजनिया आप सब गांव पांडवाण जिला चरखी दादरी से कुलदीप सांगवान, बलजीत सांगवान, लतीफ, प्रदीप, राजबीर, ओम प्रकाश गांधी और इनके बहुत सारे साथी। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा और इनका समस्त परिवार। गांव केलंगा से हैं मास्टर सुंदरपाल कौशिक, देबू, परी और इनका समस्त परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्या, नीलम बत्या, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश और इनका समस्त परिवार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं मीका वीर, बलविंदर, जयतेग, हरदेव और इनके बहुत सारे साथी। महेंद्रगढ़ से हैं विकास गांधी, ममता, वंश, दिया, नोनू, शगुन, विकी

एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल, अंकित, साहिल और इनके बहुत सारे साथी। डाबर कॉलोनी भिवानी से हैं रमेश शिवानीवाल, सौरभ, रमेश वर्मा और इनके बहुत सारे साथी। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर न्यूतन, संदीप गोगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और इनके बहुत सारे साथी। तो सुनो भी अपनी पसंद पे हरियाणवी फिल्मी गीत।

0: और भाई हरियाणवी फिल्म गीत के साथ है कार्यक्रम का समय हो समाप्त। सारे बाण बजाने राम राम।
1: आपने सुना लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
2: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत

मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गए हैं। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र को बाईपास परियोजना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के लिए ये बाईपास नहीं बल्कि सड़क मार्ग के रूप में जीवन रेखा है, जिसका कुरुक्षेत्र के नागरिकों को लंबे समय से इंतजार था। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 27 किलोमीटर 900 मीटर लंबा ये बाईपास कुरुक्षेत्र के दक्षिणी भाग से होकर निकाला जाएगा, जो कुरुक्षेत्र पिहोवा मार्ग पर ज्योतिसर के पास इंदम्बरी से शुरू होकर राज्य मुख्य मार्ग 6 MDR 119 किरमिच रोड अमीन रोड व राष्ट्रीय मुख्य मार्ग 44 को जोड़ता हुआ गांव मथाना पर समाप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से न केवल पिपली चौक पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि कुरुक्षेत्र शहर को जाम से स्थायी राहत मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली यमुनानगर हरिद्वार समेत पंजाब व कैथल की और यातायात और भी आसान व सुरक्षित हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर ज्योतिसर एवं अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुँच आसान होने से कुरुक्षेत्र में पर्यटन व्यापार निवेश व रोजगार को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये ट्रिपल इंजन सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वैश्विक ताप वृद्धि की समस्या से निपटने व मां को सम्मान देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत आम लोगों ने बड़ी संख्या में न केवल अपनी माँ के नाम पेड़ लगाए बल्कि उनका पोषण करने का कार्य भी किया। भिवानी जिला में शिक्षा विभाग के माध्यम से बीते वर्ष 2025-26 में जिला के 1178 प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में 1,16,800 पौधे लगाए गए। इस अभियान से न केवल स्कूली बच्चे जुड़े बल्कि आम नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में जुड़कर अपने अपने प्रांगण व सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए। भिवानी निवासी छात्रा आरोही राष्ट्रपति युवा अवार्डी अशोक भारद्वाज महंत चरणदास मोहनदत्त ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने न केवल प्रांगण बल्कि विभिन्न सार्वजनिक

0: स्थानों पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए। इससे न केवल उन्हें अपनी माँ का सम्मान करने का अवसर मिला, बल्कि इन पौधों से पर्यावरण का संरक्षण भी हुआ।
1: नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा आजाद युवा समिति जैसे अनेक संगठन जो हमारे साथ में जो रहे और उनके तहत हमने काम किया। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर जो हमने काम किया, इसमें काफी बच्चे भी हमारे से जुड़े हैं, युवा भी जुड़े हैं, अनेक सामाजिक संगठन जुड़े हैं और सरकार और प्रशासन के जो डिपार्टमेंट से लोग हैं वो भी उनके साथ भी जुड़कर हमने काम किया। और हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कल यमुनानगर में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अवैध कॉलोनियों, फर्जी रजिस्ट्रियों, अवैध कब्जों, प्रदूषण, कालीबाजारी तथा जन समस्याओं से जुड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री विज ने अवैध कॉलोनियां काटे जाने के मामले में संलिप्त संबंधित रजिस्ट्रारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, आइए फिल्मी गाने सुनते हैं।

ये था अरजू फिल्म का गीत। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें आपने सुनी। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था अन्नू मलिक का। अगला गीत आपको सुनवाते हैं।

हम हो गए आपके, ये नाम था फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर की रचना थी, संगीत था नदीम श्रवण का। अगला गीत आपके लिए रोग फिल्म से हमने चुना है। उदित नारायण की आवाज़ आप सुनेंगे, नीलेश मिश्र ने इसको लिखा है और संगीत है MM करीम का। आइए सुनते हैं।

उदित नारायण की आवाज़ में रोग फिल्म का गीत आपने सुना। नीलेश मिश्र ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था MM करीम ने। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में गाया हुआ, दिल फिल्म का नाम है।

ये गीत आपने सुना दिल फिल्म से, और इसे गाया था उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। गीत लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आपके सुझावों का, प्रतिक्रियाओं का, आपके मार्गदर्शन का हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में हार्दिक स्वागत है। आप हमें इन टेलीफोन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 01262 255 446, 255 447 और 255 448। श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 31 मई को शाम 7:30 बजे। ये थी जानकारी आपके लिए, और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दरिया दिल फिल्म का गीत आपने नितिन मुकेश की आवाज़ में गाया हुआ सुना। इंदिवर के बोल थे, संगीत है राजेश रोशन का। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है सातवां आसमान फिल्म से। उदित नारायण और प्रीति उत्तम की आवाज़ें आप सुनेंगे। सूरज सनीम के बोल हैं, संगीत है राम लक्ष्मण का।

उदित नारायण और प्रीति उत्तम की आवाज़ों में सातवां आसमान फिल्म का ये गीत था। सूरज सनीम के बोल थे, संगीत था राम लक्ष्मण का। ये गीत हमारे उन श्रोताओं ने तो सही तरीके से सुन लिया होगा जिन्होंने इसे ऐप पर सुना है। रेडियो सेट पर सुनने वाले श्रोताओं के लिए ये गीत सही गुणवत्ता में उन तक नहीं पहुंचा होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का गीत। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ें हैं, समीर के बोल हैं, संगीत है अनु मलिक का।

दीवाना फिल्म का गीत आपने सुना, विनोद राठौर और अलका याग्निक ने गाया था। समीर के बोल थे, संगीत था नदीम श्रवण का। और इससे पहले आपको सुनवाया था हमने हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ें थी। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना हमने आपके लिए चुना है सात रंग के सपने फिल्म से। बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक के साथ साथी भी हैं, समीर के बोल हैं।

0: ये गीत आपने सुना सात रंग के सपने फिल्म से, बाबुल सुप्रियो, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें थी। ये था फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गाना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। दो बजने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, इसके बाद हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार रिले किए जा रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his five-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least seven people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. US Defence Secretary

0: against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of three-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के पहुंचे महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से अब समाचार विस्तार से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है ये अभियान अभी जारी है इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है
4: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने

0: शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले

0: उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे। महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में। नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: खेत खलियान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बन भाई ने बलजीत भाई की राम राम। भाई देखो, मौसम तो आज बड़ा सुहावना हो गया है, क्योंकि आकाशवाणी के प्रांगण की बात करें तो बादलवाई और भाई थोड़ी तेज हवाएं, बूंदाबांदी होने की भी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि बताया जा रहा था कि भाई 3-4 दिन का मौसम जो है ये परिवर्तनशील रहेगा, तो जो तापमान बढ़ता जा रहा था उससे कुछ हद तक जो है राहत मिल गई है। कई जगह बारिश भी हुई है और बारिश होने का अंदेशा भी है। तो इससे कि उसमें हम देखें कि भाई बहुत से अपने जो काम हैं जो हमने इस टाइम पर करने हैं तो वे काम अपना निपटाएं। खास तौर पर बात करें भाई, देखो कपास में अगर सिंचाई की बात करें तो पहला पानी बहुत देर तक लाने की कही जा है, लेकिन इतना भी देर तक ना लाओ कि भाई अपनी फसल ने नुकसान पहुँच जाए। हालाँकि मौसम ईशा देख कर ना थोड़ा रुक जाएं और उसके बाद जो है फिर सिंचाई करें। भाई जो बैसाखी मूंग ले रखी भाइया ने उसकी फलियाँ की तुड़ाई कर लें, क्योंकि अगली जो हमने सावनी जो फसल लेनी है उसके लिए खेत की तैयारी भी करनी है। बाकी भाई अपने जो चारे की फसल हैं, ज्वार है, बाजरा है, उनकी बिजाई का भी समय, क्योंकि इस टाइम पर हम उनकी बिजाई कर सकें हैं और करके इसके कि पूरे जुलाई तक हम इसकी बिजाई किया करें, लेकिन पानीपात के अपने दुर्साधन है तो कर दें हम जो जमीन है अपनी पड़ेवा करके और चारा थोड़ा पहले मिल जाएगा। बाकी इस जो अपना जून का महीना लगा इस तरह धान की रोपाई का भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ भाई नर्सरी में बिजाई भी लाग रहे हैं कण प्यौध के लिए, लेकिन धान की फिर वह बात आ जाए कि बार बार यह बात कही जाए कि भाई जीत अपने दौरे पानीपात के साधन हैं, भरपूर मात्रा में पानीपात से, तो उस जगह पर हम कोशिश करें कि भाई धान की काश्त करी जा। अगर पानी कम है हमारे दौरे तो फिर धान की बजाय दूसरी जो फसल हैं वो हम ले सकते हैं, भाई बाजरा है या भाई मूँगफली है या और कोई सी भी फसल है, तो इनका हम विकल्प चुन सके हैं। बाकी जून का महीना शुरू हो दे और भाई इसमें मानसून की भी बाट देखी जा है, कुछ फसलें ऐसी हैं जो मानसून की बारिश आ दें और उनकी बिजाई शुरू हो जाए है, कुछ थोड़ा हम पहले भी कर लें भाई, तिल है, मक्का है, अरहर है, इनकी बिजाइयाँ का सारियाँ का टाइम जो है ये जून का महीना हो जाए है और इसमें हमने इससे पहले अपना खेत की तैयारी भी करनी है और बीज का चुनाव भी करना है, किस्म भी लेनी है, सारे काम इसमें हमने करने हैं। और इससे के सामने देखें सबसे पहले जो पशुधन के लिए अपना चारे के लिए, तो ज्वार और बाजरे का जो चारे के लिए हमने लेना है उसका भी आ जाएगा और बाजरे का तो जो है दाने के लिए काश्त भी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान यूँ भी रखना है कि भाई जो अपना ज़मीन है उसकी बाई जुताई करें हम और फसलों का थोड़ा फसल चक्र अपना लें, यानी कि अदर बदल के फसल लें, यू चक्कर ना रखें कि भाई धान और गेहूँ दो फसलों में फिर दिक्कत आ जाए, जो ज़मीन की ताकत है, उपजाऊपन है वो भी कम होता चला जा है, एक दो तत्व जो इन फसलों से उसकी कमी होती चली जाए और दूसरे तत्व बढ़ते चले जाएँ, तो इसमें बड़ी दिक्कत आवा है। इसलिए हमने फसल थोड़ी अदल बदल के बोनी चाहिए और फसल चक्कर अपनाना चाहिए।

हरी खाद का इस्तेमाल कर लें वो बहुत बढ़िया रहे। और कुछ जो समय है अपना रबी की फसल कट्टे पाछे और भाई जो खरीफ वाली फसल हैं वह लेने से पहले बीच में मार दो रहे ऐसा समय हो गया है कि इसमें बहुत से काम निपटा सके हैं। अपनी जमीन जो खेत की जमीन है उसका मिट्टी परीक्षण है, पानी का परीक्षण है, वह हम करा सके हैं ताकि आगे चाल के कोई दिक्कत ना और कोई फसल लें तो हमने पता लग जाए कि इसमें कौन कौन से तत्वों की कमी है जमीन में और हमने कौन से खाद इसमें देने हैं। तो ये काम बहुत से हैं, हरी खाद का भी बीच में हम काम ले सके हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण काम आ गया है भाई, जो अपनी जमीन है खेत की उसकी जुताई करने का। जुताई तो हम हर बार करें हैं, जब भी हम कोई बीज की बिजाई करें हैं भाई जुताई करके ने सोगा पाटा ला के जब हम बिजाई करें हैं, लेकिन वह थोड़ी कम गहराई तक सीमित रहे हैं। तो ये जो बीज का समय है इसमें हम गहरी जुताई कर सकें हैं ताकि आगे चाल के कोई दिक्कत ना आवे, कीड़े बीमारी भी खत्म हो जो जमीन है उसमें दें और उसका कड़ड़ापन भी टूटे। तो इससे विषय पर जो बातचीत है अपना चर्चा करेंगे हमें कि गहरी जुताई का के महत्व खेता में। लेकिन उससे पहले भाइयों का मनोरंजन करवाओगे, भाइयों को रागनी सुनवाओगे, गायक कलाकार होंगे दिलीप सिंह और उनके साथी।

मेरे तस्वीर रागनी गायक कलाकार थे दिलीप सिंह और उनके साथी भैया ने एक रागनी इनकी गाई और सुनवाओगे, लेकिन जो जिक्र किया था कि भाई जो गर्मियाँ में गहरी जुताई है इसका के महत्व है। तो भाई आमतौर पर जब भी हम फसल ले हैं खेता में फसलों की बुआई के टाइम पर बार बार हम 15-1 सेंटीमीटर बस इस तो ऊपर ऊपर आम जुताई करें अपने खेत की बाई जुताई करें हैं तो नीचे की जो परत है ना वह कठोर बनती चली जाए और उसका नुकसान यो है कि जब बारिश का पानी आवे है चमाशा में जब मीह बरसे है तो वो पानी पूरी तरह से ज़मीन के नीचे नहीं जान पाता और वो बह के दूर चला जा है। तो वह कठोर परत तोड़ने खातर सलाह दी जा है कि भाई थोड़ी 15 सेंटीमीटर से नीचे थोड़ी गहरी जुताई कर दें ताकि वह नीचे ही कठोर परत से वह टूट जाए और ज़मीन में पानी सोखण की क्षमता बन जाए। फिर बात करें कि भाई ग्रीष्मकालीन जो जुताई है गहरी जुताई है वह हम किस टाइम पर करें, तो जब अपना खेत खाली हो है और अच्छा घाम पड़े है तो वो मौसम हो जाए गेहूँ की कटाई के बाद का, यानी कि रबी की जो फसलें हैं वह कट जाए हैं और जो खरीफ वाली फसल हैं उनका ही बट टाइम रह जाए है बुआई में। तो बीज का जो समय है वो अपना ख़ास तौर पर जो गहरी जुताई का ही माना जाए है, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम गहरी जुताई कर देंगे तो जो खरपतवार हैं अपने खेत में बहुत से खरपतवार ऐसे हो जाए हैं जिनकी हम बात करें कि भाई अपना जो दूब है कांसा है इस तरह का बीज इसका सही तरीके जानदा नहीं और बिना गहराई की जुताई करें बिना इसकी जो जड़ है वो सूख दी नहीं, यानी कि ऊपर तक हम कितना ही काट दें लेकिन इसकी जड़ जो है वो बड़ी गहराई में पहुँच जाए हैं और जिसके कारण वो फिर पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाता। लेकिन अगर गहरी जुताई करें हैं तो फिर इसमें जो है जो मोथा है दूब है घास है कांसा है ये गहरी जुताई तो उसकी जड़ ऊपर आ जाए है वह सूख कर वो खरपतवार कम हो जाए है, क्योंकि खरपतवार जो है फसल में बहुत नुकसान पहुँचावे हैं। कोई सी भी फसल लें हम सबसे पहले निराई गुड़ाई की सलाह दी जाए कि भाई खरपतवार ना हो, क्योंकि अगर जो हम खाद दें हैं अपनी फसल में उस तो फिर खरपतवार बढ़ने शुरू हो जाए हैं और फसल कमज़ोर रह जाए हैं। तो सब तो मोटी समस्या आवे हैं, तो एक तो गहरी जुताई तो इसकी समस्या खत्म होगी, एक जो ज़मीन के नीचे जो कठोर परत बन जाए है वह टूट करने और नीचे ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता बन जाएगी ताकि अगर बारिश का पानी हुआ है खेत में तो नीचे चौकन है और नीचे रिश्क चला जा अपने खेत में बार पानी ना जा पावे। खास तौर पे दिक्कत यह आ जाए कि भाई फिर पानी नीचे नहीं जान पाता बह के उधर उधर चला जा है और अपने जो चोए हैं वो नीचे आंदे चले जाएँ पानी की कमी होती चली जाए, अगर वो पानी नीचे रिश्क जाएगा तो फिर अपना काम आना है, ऊपर चोए हो जाएंगे ट्यूबवेल हैं जो हमने लगा रखे हैं नलकूप लगा रखे हैं उनमें पानी ठीक मात्रा में बना रह जाएगा। फिर ध्यान करना हमने कि भाई अगर अपना खेत थोड़ा ढाल में है तो गहरी जुताई उसमें भी हमने करनी है और गहरी जुताई करने के बाद जो फसल की बुआई है या जिस हिसाब से हम कल्टीवेटर है या हैरो है उस तरह बाई इसकी करें हैं तो ढाल के विपरीत दिशा में हमने करनी है। पूर्व पश्चिम में जो अगर ढाल है अपने खेत का तो उत्तर दक्षिण की खूड हमने उसमें काटने हैं ताकि जो पानी आओ तो एकदम से ढाल में ना जावे और थोड़ा हा अपने खेत में वो पानी रुक जाए, तो इस तरीके से हमने करना है। बाकी नो ध्यान आ जाए कि भाई कुछ जो कीट पतंगे हैं हानिकारक कीड़े हैं उनके लार्वे रह जाए आग रहे हैं वह हम ऊपर तक जो कीटनाशक का छिड़काव करे हैं उस तक ख़त्म कर दे चले जा, लेकिन जो गहराई में जाकर ने अपने जो लार्वे दे हैं अंडे दे हैं उन तक उस दवाई का प्रकोप नहीं पहुँच पाता, यानी कि दवाई की पहुँच नहीं हो पाती और वो फिर न्यू के न्यू सुरक्षित रह जाए ज़मीन के भीतर। अगर हम गहरी जुताई कर देंगे तो थोड़े ढेले ही पार्ट हैं अगर ऊपर आ जाएंगे वह तो घाम पड़े है ऊपर से यानी कि मई में जून में अच्छी धूप आ जाए तो उस तो उनके में जो अंडे हैं वह भी ख़त्म हो जाएंगे, जो फसल में हानिकारक कीट्स हैं फसल के जो रोगाणु हैं वह ज़मीन की सतह पर आ जाएंगे, कुछ तो उन पक्षी चुग जाएंगे और कुछ जो है धूप में नष्ट हो जाएंगे, तो ज़मीन है वह हमारी साफ सुथरी बनेगी और एक नीचे तक जो है संचार हो जाए है उसमें ऑक्सीजन का ज़मीन के अंदर। तो ये बहुत से फायदे हैं अगर हम थोड़ी गहरी जुताई करके चला अपने खेत की, ऐसा नहीं है कि वह घनी गहराई कर दें क्योंकि घनी गहरीकरण में भी फिर आगे चाल कर
फसल लेने में दिक्कत आओगी क्योंकि उसका उपजाऊपन भी नष्ट हो जाए। तो इसी करें कि हमें आमतौर पर एक बिलात की तकरीबन हम करके चाल रहे हैं कि भाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक की जब हम बुआरा करें हैं, तो इसमें 15 सेंटीमीटर तक की थोड़ी ले जाएं, 16, 17, 18 सेंटीमीटर तक उसकी गहरी अच्छी जुताई कर देंगे तो फिर जो है हमने फ़ायदा मिलेगा। उसमें हमारी ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो भी कम नहीं होगा। अगर घड़िए ढेले पाट दिए हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाएगा और दोबारा उपजाऊपन आने में 2 साल उसमें लाग जाएंगे आराम से। तो इसके बीच बीच में हमने फिर थोड़ा खाद का यानी कि हरी खाद का भी बीच में प्रयोग कर लें, दलहनी फसलों का प्रयोग कर लें, या फिर हम फसल चक्र अपना लें, क्योंकि एक के फसल के भी जो है कीट्स हैं, जो रोग हैं वो आदि हो जाए हैं, तो अगर फसल अदल बदल का हमने बोई जाएगी तो फिर उसमें जो कीट्स हैं और जो रोग हैं इनमें भी बहुत सा फर्क पड़ेगा। तो समय रह गया था, जिक्र और भी करेंगे। भैया ने एक रागिनी और सुनवा दें, गायक कलाकार एक बार फिर होंगे दिलीप सिंह व साथी।

ते भाई रागनी सुनी गायक लगा थे दिलीप सिंह और उनके साथी, और जो जिक्र चल रहा था अपना गहरी जुताई का था भाई। गहरी जुताई का देखो समय तकरीबन जो जागरूक किसान हैं भाई, जिन्होंने सोच रखी थी कि हमने मिट्टी परीक्षण भी करना है जब अपने खेत खाली होंगे, पानी की जांच भी करानी है, गहरी जुताई भी करनी है, और इसमें जो अपने हरी खाद का भी हमने इंतजाम करना है खेतों के अंदर, क्योंकि रासायनिक के खाद हम डालने ज़रूर हैं और इसकी जो है आदि भी पड़ गई है हमारी ज़मीन, लेकिन निरा हम यूँ डालने जाएंगे इससे ज़मीन की सेहत पर बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि देसी खाद जो है वो ज़मीन की तासीर ने सुधारा है, हरे खाद हैं, केंचुआ खाद हैं, वो ज़मीन की तासीर ने सुधारा करें, लेकिन हम रासायनिक रासायनिक खाद, हालांकि यह जो हमारी उत्पादन क्षमता है उसने तो बढ़ा दे है, लेकिन गुणवत्ता में थोड़ी कमी आंदी चली जा है। अगर हम रासायनिक खादों का धीरे धीरे कम प्रयोग करेंगे तो हमारी जेब पर जो असर पड़ गया है, भारी असर पड़ा है खर्चे का खेती में, वो भी कम होगा और जो फसल की गुणवत्ता है वह भी सुधरेगी, लेकिन करना पड़ेगा धीरे धीरे, कम नहीं है कभी हमने एक कदम बंद कर दिया और सीधे हम जो अपने देसी खाद हैं उनके ऊपर आ गए, तो ऐसा भी हमने नहीं करना है। तो भाई जो गहरी जुताई इसके बहुत फायदे हैं, और ये जो है कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, चालें सारे बाण भाइया ने, राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सफा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 और 15 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार।

0: युवा संसार सुन रहे सभी साथियों को आपकी साथी रिशिता का नमस्कार
1: और आप सभी को याचना का भी नमस्कार। साथियों, आज हम मना रहे हैं गोवा राज्यत्व दिवस। अगर बात करें तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुनहरे तटों और समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और बताएं तो आपको यह दिन इसके इतिहास के बारे में, तो उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब गोवा को भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। यह दिवस गोवा वासियों के लिए गर्व और उत्साह का प्रतीक है। गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा और जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली तब भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने गोवा की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और इसी को लेकर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया और इसके बाद गोवा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसके साथ साथ दमन और दीव भी इसी में जोड़े गए। वर्षों के संघर्ष और जनता की मांग के बाद 30 मई 1987 को गोवा को भारत के 25वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस दिन गोवा औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य बना और दमन व दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि अपनी संस्कृति और इतिहास का सम्मान करते हुए विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए।
0: साथियों, जैसा याचना ने बताया कि आज हम मना रहे हैं गोवा का राज्य स्थापना दिवस। आपको बताएं कि यह दिन गोवा वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुनहरे समुद्र तटों, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की कोंकणी संस्कृति, पुर्तगाली आर्किटेक्चरल कला और विविध व्यंजन इसे एक अनूठी पहचान देते हैं। यह दिन गोवा वासियों के लिए केवल एक तिथि नहीं बल्कि उनकी पहचान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। गोवा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन, मछली पालन और खनन पर आधारित है। यह दिन आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक सुअवसर है।
1: और साथियों, अगर आगे बढ़े हमारे कार्यक्रम में तो आप सब जानते हैं आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं रोजगार समाचार विशेषांक। और सबसे पहला जो रोजगार समाचार रहेगा वो कॉल इंडिया लिमिटेड की ओर से रहेगा। उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। कुल रिक्तियां 276 हैं और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, खासकर माइनिंग इंजीनियरिंग में, और आपके न्यूनतम 60% जो है अंक होने चाहिए उसमें। इसके अलावा आपका जो गेट स्कोर है 2025 का वो अनिवार्य है। इसकी आयु सीमा की बात करें तो वो 20 से 30 वर्ष तक रहेगी। आवेदन 7 जून 2026 तक स्वीकृत रहेंगे। आप सभी उसकी वेबसाइट नोट कर लें, callindia.in। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, callindia.in। और अगला रोजगार समाचार रहेगा नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से डिप्टी मैनेजर जो टेक्निकल के पद के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके लिए कुल रिक्तियां 85 हैं और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक होनी चाहिए और आपका जो गेट है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के तहत। आयु सीमा इसके लिए अधिकतम 34 वर्ष रहेगी। आवेदन जो है इसके 3 जून तक स्वीकृत हैं। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, nhidcl.com। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, nhidcl.com।
0: अगले रोजगार समाचार के लिए 11 जून से पहले आप से इस सरकारी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं क्योंकि कोल इंडिया ने 660 मैनेजमेंट ट्रेनी वैकेंसी निकाल दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ CBT होगी। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कई अन्य ब्रांच के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं और सैलरी की बात करें तो 18 लाख पर एनम तक जा सकती है। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 30 वर्ष के आप होने चाहिए। वेबसाइट है callindia.in। वेबसाइट हम एक बार दोबारा दोहरा देते हैं, callindia.in। अगले रोजगार समाचार के लिए 9 जून से पहले आप इस NHRC की वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती यंग प्रोफेशनल्स और जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट के लिए है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई परीक्षा नहीं होगी और कोई वर्क अनुभव भी नहीं चाहिए। सैलरी मिलेगी 70,000 प्रति माह और यह नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। पात्रता की बात करें तो LLB डिग्री होनी चाहिए। अधिकतम आयु 32 वर्ष हो सकती है। वेबसाइट है nhrc.nic.in। वेबसाइट एक बार हम आपको दोबारा बता रहे हैं, nhrc.nic.in। साथियों रोज़गार आपको ऐसे ही बताते रहेंगे, और उससे पहले सुन लेते हैं गीत फिल्म विश्वात्मा से, जिसे संगीत दिया है विचू शाह ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, और आवाज़ है साधना सरगम की।

0: साथियों, भी हमने सुना ये गीत फिल्म विश्वात्मा से, जिसे संगीत दिया था विजय शाह ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और आवाज़ें थी साधना सरगम की।
1: और अगला रोजगार समाचार है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। उन्होंने अप्रेंटिस के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए कुल रिक्तियां 7150 रहेंगी। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी विषय में हो सकती है। इसके लिए आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रहेगी। अगर इसके अंतिम तिथि की बात करें कि आप आवेदन कब तक कर सकते हैं, तो वो रहेगा 8 जून 2026 तक। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, जो रहेगी sbi.co.in। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, sbi.co.in। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी जो है अप्रेंटिस के लिए अधिसूचना जारी की है। इसकी कुल रिक्तियां 5000 रहेंगी। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने भी जो है वो स्नातक की डिग्री मांगी है। आयु सीमा इसके लिए भी 20 से 28 वर्ष रहेगी। आवेदन इसके भी 8 जून तक स्वीकृत है। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, bankofbaroda.in। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, bankofbaroda.in।
0: अगला रोजगार समाचार है, DRDO NMRL 2026 पेड इंटर्नशिप योजना DRDO NMRL द्वारा शुरू की गई है। चुने गए छात्रों को 6 महीने के लिए प्रतिमाह 5000 का वजीफा मिलेगा। छात्रों को ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेजकर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून 2026 है। भुगतान किए गए आवेदन की अंतिम तिथि आपको बता दी है। और इंटर्नशिप कार्यक्रम को अंतिम वर्ष BE विभिन्न क्षेत्रों में BTech छात्र और द्वितीय वर्ष के MSc छात्र के लिए पेश किया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में स्थित NMRL में 20 सीटें उपलब्ध है। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ईमेल है, नोट कीजिएगा साथियों, mmg.nmrl@gov.in। ईमेल हम आपको दोबारा बता रहे हैं, mmg.nmrl@gov.in। इंटर्नशिप शुरू होगी 1 जुलाई 2026 से। चयन प्रक्रिया की बात करें तो एकेडमिक मेरिट और ऑनलाइन इंटरेक्शन होगा। अगला रोजगार समाचार है, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 635 अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 6 जून 2026 को समाप्त होगी। योग्य उम्मीदवार punjabandsindh.bank.in पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है punjabandsindh.bank.in। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी और वे प्रतिमाह 12,300 रुपये का वजीफा कमाएंगे। चयन प्रक्रिया योग्यता आधारित है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। काम करने का समय 10 बजे से 5 बजे तक होगा।
1: और इसके अलावा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पद पर जो है उनके लिए सूचना जारी की है। इसके लिए कुल रिक्तियां जो है वो 255 निकाली गई हैं। उम्मीदवार की योग्यता LLB होनी चाहिए। और इसकी आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष रहेगी। आवेदन इसके 29 मई 2026 तक स्वीकृत हैं, यानी कि आज ही। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट नोट कर लें, hpsc.gov.in। इसके अलावा इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 ग्रुप सी में 190 रिक्तियां निकाली गई हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास के साथ साथ आपके पास 6 महीने का जो है PBS हैंडलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आयु सीमा इसकी 18 से 25 वर्ष रहेगी। आवेदन इसके 31 मई 2026 तक स्वीकृत हैं। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, indianarmy.nic.in।
0: अगला रोजगार समाचार है, भारत संचार निगम लिमिटेड ने जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की पोस्ट निकाली है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य JTO के कुल 100 पदों को भरना है। टेलीकॉम सेक्टर में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 3 जुलाई 2026 है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 वर्ष होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT होगा। वेबसाइट है externalexam.bsnl.co.in या फिर bsnl.go.in। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास BE या BTech या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। जिन शाखाओं की अनुमति है उनमें टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी भी स्वीकार्य है। संबंधित विषयों में एमटेक के उम्मीदवार पात्र हैं। डिग्री केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या यूजीसी द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
1: और अब सुनवा देते हैं आपको अगला गीत जो रहेगा, एक था फिल्म, एक था टाइगर फिल्म से। इसको गाया है वाजिद खान और श्रेया घोषाल ने। इसके बोल लिखे हैं कौशल मुनीर ने और इसको संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

0: और अभी आप सुन रहे थे एक था टाइगर फिल्म से एक गीत, आवाज़ें थी वाजिद खान और श्रेया घोषाल की, बोल लिखे थे कौसर मुनीर ने और संगीत दिया था साजिद वाजिद ने।
1: साथियों, कार्यक्रम में अगला रोजगार समाचार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS भर्ती 2026 जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 607 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 192 राज्य सेवा और 415 जूनियर सेवा के पद शामिल हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर 3 जुलाई 2026 तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी गई है। वहीं जूनियर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। UR और राजस्थान के क्रीमी लेयर OBC या MBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹600 है। वहीं राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC या MBC, EWS और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹400 है। यह आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
0: और इसी के अलावा इंडियन नेवी में जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। कुल रिक्तियां इसकी 15 रहेंगी। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी के 10वीं और 12वीं में इंग्लिश में कम से कम जो है वो 60% अंक होने चाहिए और MSc या फिर BE, इसके अलावा BTech, MTech, MCA with BCA या BSc में भी जो है आपके न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। आयु सीमा इसकी 19 से 24 वर्ष रहेगी। आवेदन इसके 1 जून 2026 तक स्वीकृत हैं। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, joinindianavy.gov.in। इसके अलावा CSIR NEIST ने MTS और ड्राइवर के पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। कुल रिक्तियां इसकी 10 रहेंगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MTS के लिए 10वीं पास और ड्राइवर के लिए 10वीं पास के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रहेगी। आवेदन 4 जून 2026 तक स्वीकृत है। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, neist.res.in। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, neist.res.in।
1: अगला रोजगार समाचार। SSSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के 1265 रिक्त पदों पर भर्ती जारी कर दी है। वेबसाइट आपको दोबारा बता देते हैं, ssc.gov.in। इसकी अंतिम तिथि 23 जून 2026 है। चयन के चरण की बात करें तो CBT, फिर क्वालिफाइंग CPT और मेरिट लिस्ट होगा। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA, BSc या इसके समकक्ष डिग्री के साथ वर्ड प्रोसेसिंग जैसे MS वर्ड और स्प्रेडशीट जैसे MS एक्सेल आदि

0: की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी या संस्कृत में मैट्रिक पास होनी चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन फीस 710 से 1200 के बीच रखी गई है।
1: और यहीं पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने टेक्निकल और साइंटिफिक ट्रेनर्स की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। शैक्षणिक योग्यता इसमें बीटेक, एमएससी रिलेटेड फील्ड में मांगी गई है। इसके अलावा गेट और नेट का स्कोर भी रहेगा। कुल रिक्तियां इसके लिए 150 रहेंगी। आयु सीमा इसमें अधिकतम 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। आवेदन 4 जून तक स्वीकृत है। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, dpcc.delhi.gov.in। और यहीं पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेस्टर्न रीजन ने लीगल कंसल्टेंट के एक पद के लिए सूचना जारी की है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वो नेशनल लॉ ऑफ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी या फिर देश के अन्य समकक्ष विधि विद्यालयों से लॉ में स्नातक डिग्री होना चाहिए। न्यूनतम इसमें 60% अंक मांगे गए हैं। आवेदन इसके 31 मई तक स्वीकृत है। आयु सीमा जो है इसकी अधिकतम 32 वर्ष रहेगी। वेबसाइट नोट कर लें, sscwr.net। और साथियों, इसी के साथ जो है कार्यक्रम होता है यहीं पर समाप्त। फिर मिलेंगे आपसे कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात 9:30 पर आप सुनेंगे साहित्य भारती रूपरेखा, संस्कृति भारती पत्रिका, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका, राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका और राष्ट्रीय युवा पत्रिका। देर रात 10:00 होगा कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ये कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:25 पर सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। एक फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:15 पर। और अभी शाम 6:20 पर कार्यक्रम आप सुनेंगे कृषि जगत में कृषि उत्पादों का संवर्धन और बातचीत रहेगी ज्वार और बाजरे की चारे के लिए काश्त। वार्ताकार हैं डॉक्टर कन्नौज। ग्रामीण संसार में आज आप सुनेंगे पशु पक्षियों की देखभाल के बारे में और हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम मन की बात का संस्कृत में प्रसारण किया जाएगा 11:45 पर। शास्त्रीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा देर रात 10 बजे आकाशवाणी के।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से कल प्रातः आप सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम वंदना, 6:40 पर श्री रामचरितमानस गान, सुगम संगीत प्रातः 7:15 पर और रात 8:25 पर। समसामयिक चर्चाओं पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह सवेरे प्रातः 7:35 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम एक कलाकार प्रातः 9:00, आपके अनुरोध पर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम दोपहर 1:10 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम 7:30 पर सायं, एक फिल्म से कार्यक्रम रात 9:15 पर। लोक संगीत कार्यक्रम देर रात 9:30 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप कल सुनेंगे। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बालकुंज। बालकुंज में कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व दूध दिवस, विश्व साइकिल दिवस, CIIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम और वैश्विक अभिभावक दिवस के बारे में। दोपहर में आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। घर आंगन में भी बातचीत का विषय रहेगा विश्व साइकिल दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ग्लोबल अभिभावक दिवस और विश्व दूध दिवस। शाम को होगा कार्यक्रम युवा संसार।

0: कल शाम 6:20 पर आप कार्यक्रम कृषि जगत में सुनेंगे बातचीत। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल विषय पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजू शर्मा। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में भेंट वार्ता रहेगी तंबाकू से होने वाली हानियों के बारे में। भेंट वार्ताकार होंगे विपुल गुप्ता और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बातचीत रखी जाएगी। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान में अंगूर के बागों की देखभाल के बारे में। और प्रातः 6:50 पर कार्यक्रम कृषि की बातों में आप सुनेंगे धान की उन्नत किस्में। इसी के साथ एक स्थानीय सूचना, रोहित अपने घर से 27 मई से लापता है, जिसका कद है 5'7", गोल चेहरा है, रंग सांवला है, सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना है, उम्र है 31 साल और इनके दाहिने कलाई पर तिल का निशान है। किसी के पास कोई सूचना हो तो शिवाजी कॉलोनी रोहत तक के पुलिस कंट्रोल रूम में आप सूचना दे सकते हैं। संपर्क सूत्र है 7082999119, 7082999119। ये थी स्थानीय सूचना। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के संबंध में दिए गए आदेश के बाद अतिथि अध्यापकों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार ने कहा, न्यायालय का फैसला जल्द लागू होगा। पलवल जिले में हथीन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अंतरराज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया और जींद में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति पारंगत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है। भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के योद्धाओं के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवा शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षा मंत्री आज चरखी दादरी के जोजू कला स्थित महिला महाविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मंत्री ने महाविद्यालय की 650 छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्रियां प्रदान की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेटियां अब देश व प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ाना और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना प्रदेश सरकार का मूल मंत्र है, इसीलिए सरकार ने प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने का संकल्प लिया है, ताकि किसी भी बेटी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर ना जाना पड़े और उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। मंत्री ने कहा कि जोजू कला महिला महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि जिस गांव की बेटियां कभी सीमित अवसरों तक सिमटी रहती थी, आज वहां बेटियां स्वर्ण पदक प्राप्त कर नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे केवल नौकरी पाने तक सीमित ना रहें, बल्कि लोगों को दिशा देने के लिए समाज का नेतृत्व भी करें। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए जाने के बाद अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने आज खेल मंत्री गौरव गौतम के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं खेल मंत्री गौरव गौतम का धन्यवाद व्यक्त किया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि ये उन हजारों अध्यापकों के करीब 20 वर्षों के लंबे संघर्ष की जीत है जिन्होंने लगातार अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई। श्री गौरव गौतम ने कहा कि देश व प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने में अध्यापकों की अहम भूमिका है। प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और न्यायालय के फैसले को जल्द लागू किया जाएगा।
2: जिस प्रकार से आप लोगों का पक्ष हरियाणा सरकार ने माननीय न्यायालय में रखा और उससे सिर्फ हमारे पलवल के नहीं पूरे हरियाणा के गेस्ट टीचरों का फायदा हुआ है और जो न्यायालय का आदेश आया है आपका उसको लाभ मिल चुके ऐसा हम लोग जल्दी प्रयास करेंगे।
1: चंडीगढ़ जनगणना संचालन निदेशालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण ब्लॉक कार्य पूर्ण कर लिया है। निदेशालय द्वारा जारी नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी 2094 मकान सूचीकरण ब्लॉकों को कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिससे चंडीगढ़ के सभी 10 जनगणना प्रभारों में 100% कवरेज हुई है। जनगणना संचालन निदेशक डॉक्टर नवजोत खोसा और प्रधान जनगणना अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि चंडीगढ़ जनगणना संचालन निदेशालय अब जनगणना 2027 के अगले चरण अर्थात जनसंख्या गणना के लिए पूर्णतः तैयार है जो अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। पलवल जिले में हसीन पुलिस ने आज मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं जिनमें 12.5 बोर का राइफल नुमा हथियार 315 बोर का कट्टा पिस्तौल व भारी मात्रा में कारतूस शामिल हैं। आरोपियों की उत्तर प्रदेश नंबर की कार भी जब्त की गई है। मुख्यालय में तैनात उप पुलिस अधीक्षक साहिल ढिल्लो ने बताया
3: आरोपियों ने पुलिस पार्टी को टक्कर मारते हुए गाड़ी को होटल की तरफ भगा लिया। पुलिस ने उनके पीछे अपनी गाड़ी लगाई। पूरे जिले में नाकाबंदी की गई। मुंडकटी थाने के सामने नाका लगाया वहां पर वाहनों की भीड़ के चलते वो गाड़ी रुक गई। आरोपियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किए। हमारे एक कांस्टेबल देवेंद्र के पैर में गोली भी लगी। आरोपियों ने गाड़ी को मरोली गाँव की तरफ मोड़ लिया और पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और उनकी गाड़ियों के टायर के ऊपर गोली मारी गई। गोली लगने की वजह से टायर फट गए और गाड़ी रुक गई। पलवल पुलिस ने फायर किया जिससे एक आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई और उनको काबू किया गया।
1: उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में पहचान उत्तर प्रदेश के इटावा जिला निवासी अक्रम कृष्ण आलोक माधव गुप्ता के रूप में हुई है। श्री ढिल्लो ने कहा कि फरार आरोपी विपुल द्विवेदी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के विभिन्न थानों में लूट डकैती अपहरण जानलेवा हमलों के अभियोग दर्ज हैं। किसानों को रासायनिक खादों व जहरीले कीटनाशकों से मुक्ति दिलाने और पारंपरिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से प्राकृतिक खेती में पारंगत करने के लिए जींद में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हमेटी में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जो कल समाप्त होगा। इस शिविर में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों को आधुनिक और प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं। संस्थान के मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर सुभाष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये प्रशिक्षण रासायनिक खादों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। अंधाधुंध प्रयोग ने हमारे भोजन और उत्पादन को जहरीला बना दिया है।
4: इस समय हमारे यहाँ पे प्राकृतिक खेती के ऊपर 5 दिवसीय प्रशिक्षण चला हुआ है। प्राकृतिक खेती जो जहर मुक्त गो आधारित प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा की जाती है, वो समय की जरूरत है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशकों ने, रासायनिक उर्वरकों ने हमारे भोजन को, उत्पादन को जहरीला बना दिया है। हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, हवा पानी प्रदूषित होता जा रहा है। बहुत सारी प्रजातियां जैसे आप देख रहे हो, केंचुआ है, मधुमक्खी है, चिड़िया है, विलुप्त होती जा रही है। इन सबको देखते हुए जरूरी हो गया है कि हम बगैर रसायन के प्राकृतिक तरीके से खेती को बढ़ावा दें।
1: प्रशिक्षण कर रहे गांव रंधाना के प्रगतिशील किसान दलबीर चहल ने बताया,
5: किसानों की ट्रेनिंग में प्राकृतिक खेती और जैव मुक्त खेती विषय है और करीब हरियाणा के 300 किसानों को चुना गया है जो प्रगतिशील किसान है। हमारे 300 किसान वो किसान हैं जो अपने स्तर पर 5-6 साल 8-10 साल से कार्य कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर किसानों को बड़ी बड़ी सभा करके और खेतों में जाकर धरातल पर कार्य कर रहे हैं। किसान सरकार से मिलकर चलेंगे और मोटिवेट करने का काम करेंगे, किसान जैव मुक्त खेती को अपनाएं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: है, इससे भी थोड़ा राहत मिलेगा, और जो जमीन है उसने भी थोड़ा सांस आओगे, दूसरे तत्व जो फसल ने लिए जाएंगे, क्योंकि हम एक के फसल के पास लगे रहे तो उसमें फिर जमीन में उन तत्वों की कमी होती चली जाए जो धान न चाहिए या फिर गेहूं न चाहिए। तो फसल चक्र अपनाएं, खास तौर पर जित पानी के साधन अपने दुर्ग कम है, थोड़ा दूसरी फसल लेवें, मोटे अनाज वाली फसल ले लें, बाजरा ले इसके हम। और भाई जीत अपन ने मूंग की फसल ले रखी है तो सावनी फसल लेनी है, उसके लिए खेत भी खाली करना है, तो जो पकी ओड़े फलियाँ हैं उन्हें तोड़ा अपना, और भाई खेत की तैयारी करें ताकि अगली फसल ली जा सके। बाकी साग सब्जी वाली फसलें हैं उनकी भी हमने तैयारी रखनी है, जो अपने दौरे कच्ची अवस्था में हैं तैयार हैं उन्हें कच्ची अवस्था में तोड़ के बाजार भेजें ताकि उसके अच्छे भाव मिल जाएं, और जो नई बिजाई करनी है उसके लिए खेत की तैयारी, प्यौध की तैयारी या फिर बीज की तैयारी, वो सारे काम करने हैं। और भाई कुछ भाई तंदरसरी में भी धान की बिजाई करने लग रहे हैं और कुछ ने कर भी ली है, तो ऐसा काम करें कि भाई अपना जो बीज है उसकी किस्म है उसका ठीक तरीके से चुनाव करें, क्योंकि आगे आगे चाल के तिल की भी खेती करनी है, अरहर की भी करनी है, सोयाबीन की भी है, बतेरी है इसी जो हमने आगे काश्त करनी है, तो उनके लिए बीज की तैयारी, खेत की अगर किसी भाई ने मिट्टी परीक्षण ना कराया तो वो भी अपना करा सके, क्योंकि टाइम है ही भाई पानी का परीक्षण है वो भी ज़रूरी है, खेत में अगर ट्यूबवेल है अपने पास है और उसका पानी जो हमने टेस्ट कराना है तो वो भी अभी समय है वो हम करा सके हैं, तो जो काम अपने इस टाइम पर करने के हैं वो हम कर सके हैं, और उससे के साथ साथ में जो अपने कृषि उत्पाद हैं उनकी देख रेख का भी, क्योंकि बहुत से जो काम है हमने गेहूँ कटाई का है, सरसों कटाई कढ़ाई करी है, चने की करी है, तो वो जो अपने यंत्र हैं उनकी देखभाल का भी, भाई उन्हें साफ सुथरी जगह थोड़ा जमीन तक ऊपर उठा कर और ऊपर तक उन्हें ढक दें, पॉलीथीन तो जरूर ढकें ताकि भाई बूंद आवे हैं मी बरसे है और नीचे तो जमीन आली हो जाए तो उनमें नमी ना पहुंचे, क्योंकि लोहे के यंत्र हैं सारे के सारे महंगे यंत्र हैं जंग ना खाओगे, इसलिए उन्हें सही तरीके से उसके तो कोई तेल वगैरह उन पर लगा दें और ऊपर तक जरूर ढक दें, ऊपर अगर कोई छावा है तो उसमें जरूर रखें उन्हें, और ना है तो फिर पन्नी ढक्कन का उनके ऊपर सही तरीके से प्रबंध ऐसा कर लें ताकि वो जो हमारे साधन है हमें खराब ना हो। जितने भी कृषि उत्पाद हैं बड़े महंगे हैं, और भाई जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं वो सारा का सारा बड़ी मेहनत लागे है, तो इसी कारण का आ जाए कि भाई जो हमें शुरुआत में खेती करें हैं तो शुरू में बीज की किस्म, ऐसे बीज का चुनाव करें जिनमें कीड़े बीमारी कम लागते हों, खर्चा कम आंदा हो, पानी पात थोड़े कम लेंदे हों और पैदावार हमने ठीक ठाक दिन दे हों, तो इसी जो है हमने चुनाव करना है। और भाई बात करें देखो चारे की, तो भाइयों ने एक बातचीत सुनवा दें, डॉक्टर साहब स्टूडियो में हैं, और भाई मौके की बात है, काम चाल रहा है, किसान भाई जो है सोच भी रहे हैं हरा चारा लेने की, तो इससे के ऊपर भाइयों ने बातचीत सुनवा दें, ज्वार बाजरा और लोबिया की चारे के लिए कास्ट, तो सुनाइए बातचीत।
1: आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा ज्वार बाजरा और लोबिया से उन्नत उत्पादन किस प्रकार से लें जो कि चारा हमें गर्मी के मौसम में मिलता रहे। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कन्नौज को। आप चारा अनुभाग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से पधारे हैं, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
2: सर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ज्वार की कौन कौन सी किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन दे देती हैं।
2: देखिए सर, ज्वार हमारे गर्मी और खरीफ सीजन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चारे की फसल है
1: जी,
2: जिसको जानवर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसकी पौष्टिकता के कारण और
1: जी।
2: उसके जो पत्तों की वजह से, जो कि वो आराम से इजीली बहुत अच्छी तरह उसको खा पाते हैं
1: जी
2: और वो पच भी जाता है।
1: जी
2: तो हमारी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारी जो इसकी किस्में हैं ईजाद की हैं, और अभी एक किस्म 2025 में अभी ईजाद की गई है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये किस्म है CSV64F,
1: CSV64F एफ
2: जी सर।
1: जी
2: ये किस्म जो जो रोग हैं, जो विभिन्न तरह के जो पत्ता रोग और जो इसमें विभिन्न कीट जो आते हैं उनके प्रति भी प्रतिरोधी है,
1: जी
2: और
1: यानी
2: साथ
1: वो
2: की
1: कम आते हैं इसमें।
2: जी सर ये
1: जी
2: इसमें कम आते हैं, और
1: जी
2: साथ के साथ इसमें जो पैदावार है वो भी सर काफ़ी अच्छी है,
1: जी
2: और इसको आप बीज बनाने के लिए भी आप इसका आगे यूज़ कर सकते हैं।
1: अच्छा
2: जैसे इसमें सर अगर हरे चारे की बात करें तो इसमें आप हरा चारा है जो 180 से 190 क्विंटल प्रति एकड़ आप ले सकते हो आप हरा चारा,
1: 180
2: से 190 क्विंटल तक।

0: प्रति एकड़,
1: एक एकड़
0: जी सर।
1: अच्छा,
0: और अगर और किस्मों की बात करें जो हमारे किसान भाइयों के बीच में एक फेमस किस्म है हमारी यूनिवर्सिटी की, HJ 541।
1: HJ 541
0: जी सर,
1: हरियाणा ज्वार 541।
0: जी जी सर
1: जी,
0: तो इसकी सर जो उत्पादन है जो सर इसका हरे चारे का
1: जी,
0: वो है 200 से 220 क्विंटल प्रति एकड़।
1: अच्छा, ये उससे भी ज़्यादा पैदावार दे देगी।
0: जी सर
1: जी
0: ये सर उससे ज़्यादा पैदावार देती है, बट इसमें सर जैसे अगर देखें रोग प्रति जो रोधी क्षमता है वो उसके मुकाबले थोड़ा कम है।
1: यानी कि इसमें संभावना रहती है
0: हाँ,
1: रोग
0: तो
1: आने का।
0: उसके लिए आपको फिर सर क्या है कि जैसे आपको कुछ ना कुछ आपको कीटनाशक का जो है स्प्रे करना पड़ेगा आपको
1: जी
0: इसके अंदर,
1: जी
0: तो वो है सर। और इसके अलावा दो और किस्म है जो सर अभी आई थी सर पहले
1: जी
0: अभी बीते वर्ष में ही, तो वो है सर एक HJ 1514।
1: HJ 1514
0: जी सर, और इसकी जो उत्पादन है इसका जो हरे चारे का वो है 220 से 240 क्विंटल प्रति एकड़।
1: अच्छा, इसकी
0: तो ये उससे भी ज़्यादा है सर, और
1: जी
0: ये
1: जी
0: साथ की साथ प्रतिरोधी भी है सर।
1: अच्छा
0: जी सर, और एक हमारी सर अभी संकर किस्म भी आई उसी टाइम जिस टाइम
1: हाइब्रिड।
0: हमने ये किया तो उसी के बाद ही,
1: जी
0: तो वो है HJ 1513।
1: 1513 के नाम
0: पंद्रह
1: से।
0: तेरह जी
1: जी
0: सर, और इसकी उत्पादन है जो हरे चारे की वो 260 से 280 क्विंटल प्रति एकड़ तक जो किसान भाई है आराम से
1: ये
0: ले
1: तो डॉक्टर
0: सकते
1: साहब
0: हैं।
1: बहुत ज़्यादा उत्पादन दे दे।
0: जी सर,
1: और कीड़े और बीमारियों के प्रति कैसा है इसका?
0: सर उसके प्रति ये प्रतिरोधी है।
1: अच्छा,
0: हाँ, अगर फिर भी अगर कहीं अगर किसान भाई को किसी कीट अगर दिखता है कोई भी कीट, तो वो इसके अंदर कार्बोरिल नाम से एक हमारा कीटनाशक है
1: जी
0: जो आराम से मार्केट में अपने आप किसी भी दुकान पे जहाँ पे अपने जो कीटनाशक मिलते हैं
1: जी जी
0: अपने खेती से रिलेटेड।
1: डॉक्टर साहब, वैसे तो कोशिश करें भाई कि
0: हाँ,
1: इसमें इस्तेमाल
0: कोशिश
1: ना
0: रहेगी
1: करें,
0: ना ही इस्तेमाल
1: क्योंकि
0: करें।
1: पशुओं को सीधा
0: जी
1: चराना
0: सर,
1: होता है,
0: हाँ जी,
1: तो इसलिए इसका कोशिश करें भी ना ही हो, लेकिन ज़्यादा ही हो जा
0: हाँ,
1: तो
0: तब
1: बेसिक से
0: वो
1: इस्तेमाल
0: फिर
1: कर सके
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं
1: हाँ
0: इस्तेमाल,
1: जी,
0: बट
1: लेकिन
0: कोशिश करें कि ना ही करें इस्तेमाल।
1: उसमें भी फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमने
0: हाँ
1: छिड़काव करा है तो कम से कम 10-15 दिन
0: हाँ
1: बाद
0: कम
1: कुछ
0: से
1: उन्हें
0: कम
1: चरावा।
0: 21 से 22 दिन के बाद आप इसको फिर
1: जी
0: काटें
1: जी
0: हरे चारे के लिए, अगर आप कोई कीटनाशक या
1: छिड़क रहे हैं तो।
0: खरपतवार आप छिड़कते भी हो तो आप इसके
1: जी
0: अंदर।
1: जी
0: जी सर,
1: तो ये तो होगी ज्वार की किस्म। डॉक्टर साहब, ये बीच में कोई ऐसी भी है कि एक बार कटाई कर दी तो उसके बाद दोबारा हम उससे कटाई ले सके हैं?
0: सर एक किस्म है हमारी SSG 69-3।
1: SSG 69-3।
0: ये
1: जी
0: इसको मिट्टी सुडान भी बोल देते हैं।
1: जी
0: तो इस ये किस्म है जो 3 से 5 कट आप इसके ले सकते हो, 3 से 5 बार कटाई है जो आपकी आप आराम से जो है कर सकते हैं इससे,
1: जी
0: और इससे 300 क्विंटल प्रति एकड़ तक है जो हरा चारा
1: पैदावार।
0: है जो हमें मिल जाता है।
1: जी,
0: जी सर, और
1: मिट्टी
0: ये खाने
1: सुडान
0: में भी
1: जिसको।
0: मीठा है,
1: जी
0: जो इसका जो पत्ता है जो वो काफ़ी मीठा रहता है।
1: जी
0: दूसरी जो हमारी किस्म के अगर हम बात करें उनके साथ अगर हम इसका एक कंपैरिजन करें तो
1: तुलना करें तो।
0: तुलना करें तो।
1: जी,
0: जी सर,
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें बीज की मात्रा कितनी रहेगी?
0: सर जो अगर ज्वार की अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो सर इसमें हमें 20 से 24 किलो प्रति एकड़ है जो बीज की मात्रा सर चाहिए सर।
1: जी,
0: जी सर,
1: और इसमें बिजाई का कोई टाइम है या किसी भी समय तक हम इसकी बिजाई कर
0: जो
1: सकें?
0: सर मैंने आपको अधिक कटाई वाली किस्म के बारे में जो मैंने आपको बताया, अगर
1: जी
0: आप उसके लिए जाते हो तो उसकी बिजाई का जो सही समय है वो है आप अप्रैल से मई के तक आप उसको बीज सकते हो,
1: जी
0: अप्रैल से मई में, अगर आपको वो किस्म बीजनी है। अगर आप और हैं जैसे मैंने बाकी किस्म आपको जो बताई हैं तो वो आप 25 जून से जुलाई तक है जो आप उसका मध्य जुलाई तक आप आराम से उसका जो है जो
1: बिजाई
0: आप
1: कर
0: बिजाई
1: सकें।
0: कर सकते हो।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, इसमें बिजाई का क्या तरीका रहेगा?
0: बिजाई का सर आप वो कैरा या पोरा मेथड है जो आप जो अपना है उससे आप बिजाई कर सकते हो इसका।
1: जी,
0: जी सर,
1: ये चिट्टा दे के भी कर सके हैं या लाइनों में बिजाई ठीक रहेगी?
0: सर लाइनों में ज़्यादा अच्छी रहती है सर बिजाई,
1: जी
0: क्योंकि
1: अच्छा,
0: फिर आप ये है कि अगर आप लाइन में बिजाई करते हो तो आप जितने भी आपके खरपतवार आते हैं तो
1: जी
0: उसका आप नियंत्रण आराम से अच्छे से कर पाते हो।
1: जी
0: जी सर,
1: अब डॉक्टर साहब बात करेंगे बाजरा।
0: जी
1: बाजरा
0: सर।
1: की कौन कौन सी किस्म है जो चारे के लिए इस्तेमाल करी जाए?
0: जी सर। सर देखिए, बाजरा जैसे मैंने आपको ज्वार बताया, ज्वार सर अपने सिंचित जो
1: इलाके
0: क्षेत्र
1: हैं
0: हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छी रहती है।
1: जी।
0: लेकिन अगर बाजरा की बात करें, बाजरा हमारे जहाँ पे हमारे पानी की थोड़ी कमी है
1: अपना
0: उन,
1: बरानी इलाका
0: हाँ
1: है
0: जी,
1: अगर
0: जहाँ
1: इसकी बात करें
0: बरानी हमारा एरिया क्षेत्र आ जाता है
1: जी
0: वहाँ पे काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है,
1: जी
0: तो उन क्षेत्रों के लिए हम बाजरे के लिए जा सकते हैं भी।
1: जी
0: अगर हम हरा चारा अगर हमें बाजरे से चाहिए, और
1: जी
0: ये काफ़ी अच्छी पैदावार भी देता है, जो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है।
1: जी
0: और इसके सर जो अगर किस्म की बात करूँ तो इसमें हमारी किस्म है सर एक HC20,
1: HC20 जी
0: HC20 है सर। एक सर जॉइंट बाजरा के नाम से सर किस्म आती है
1: ज्वाइंट
0: एक,
1: बाजरा।
0: जी सर।
1: अच्छा
0: और एक है सर राज बाजरा चरी दो,
1: राज बाजरा
0: बाजरा चरी
1: चरी,
0: दो,
1: ये राजस्थान की किस्म है।
0: जी सर।
1: अच्छा
0: और इस और जो हरे चारे की सर पैदावार है बाजरे की किस्मों से, ये
1: जी
0: सर हम 150 से 160 क्विंटल प्रति एकड़ तक सर आराम
1: ले
0: से ले
1: सकते हैं।
0: सकते हैं,
1: अच्छा
0: जी सर। और एक सर इसमें हम और भी कर सकते हैं,
1: जी
0: जैसे कि जो भी हमारी संकर किस्म है, संकर किस्म की जो दूसरी पीढ़ी का बीज है,
1: जी
0: संकर किस्म की जो दूसरी पीढ़ी है उसका जो बीज है, अगर उसको हम हरे चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो अन्य किस्मों के मुकाबले अच्छी पैदावार देते हैं।
1: यानी अगर हम ये कहें कि पिछले साल जिन भाइयों ने हाइब्रिड बाजरा लगाया था
0: जी सर,
1: उसका बीज अगर हम इस्तेमाल करें हैं तो वो चारे के लिए बहुत अच्छा उत्पादन
0: जी
1: दे
0: सर,
1: देगा
0: जी सर।
1: जी। तो इसमें बीज कितना लेना पड़ेगा सर?
0: सर इसमें 3 से 4 KG प्रति एकड़ आप बीज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो बिजाई के लिए।
1: जी तो इसमें बिजाई से पहले कोई उपचार वगैरह भी करना पड़ेगा?
0: जी सर, आप उपचार कर सकते हो, जैसे अपने यहाँ पे जो टीका मिलता है अपने विश्वविद्यालय से
1: जी
0: उससे आप इसका उपचार कर सकते हो सर। उससे
1: जी
0: क्या है कि और ज़्यादा आपकी जो पैदावार है, जो पौधे की वृद्धि है उसमें सहायता मिलती है सर।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे लोबिया की।
0: जी सर,
1: तो लोबिया में कौन कौन सी किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन दे दें हैं?
0: लोबिया सर जैसे हमारी एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण एक दलहनी फसल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फलीदार सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल होता है अगर
1: जी
0: हम हरे चारा से अलग बात करें, और साथ ही साथ एक हरे चारे के लिए भी हम इसको यूज़ कर
1: कर
0: सकते हैं,
1: सकते हैं
0: इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी।
0: और एक इसमें सर क्या है कि जो इसके अंदर जो प्रोटीन
1: की
0: की
1: मात्रा है
0: मात्रा है वो जो बाकी मैंने आपको बताई ज्वार और बाजरा उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी रहती है, भी
1: जी
0: 16 से 20% तक सर, 15 से 20, 16 से 20 या 22% तक इसमें आपको जो प्रोटीन की मात्रा हरे चारे में मिल जाती है,
1: मिलेगी
0: जी सर। तो
1: जी।
0: उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो एक काफ़ी अच्छा पौष्टिक आहार है सर ये अपने जानवरों
1: चारे के
0: के
1: लिए
0: लिए,
1: जी
0: एक हरे चारे की अगर हम बात करें तो। इसमें सर किस्म है एक CS88,
1: CS88
0: जी सर। और एक किस्म है सर बुंदेल लोबिया,
1: बुंदे लोबिया
0: जी सर, जो
1: जी
0: CS88 है सर। उसकी सर जो पैदावार है अगर पैदावार की बात करें हरे चारे की, तो वो 140 से 150 क्विंटल तक है जो वो प्रति एकड़ पैदावार दे देती है हरे चारे की,
1: हरे चारे की
0: जी
1: जी
0: सर। और जो बुंदेल लोबिया है वो सर पूरे भारत में अपने हरे चारे के लिए अनुशासित एक किस्म है सर,
1: जी
0: जी सर।
1: तो इसमें पैदावार कितनी मिल जाएगी
0: सर
1: बुंदेल वाले
0: इसमें
1: में?
0: भी सर पैदावार मिल जाती है सर इतनी
1: अच्छा
0: इसके आसपास सर,
1: अच्छा ये दो किस्म है
0: जी
1: इसकी
0: सर, ये दो अच्छी किस्म है सर,
1: जी। अब डॉक्टर साहब बात करें, अगर इन तीनों को मिला के हम बिजाई करें
0: जी सर।
1: तो कितना फायदा रहेगा?
0: देखिए सर, अगर आपको लोबिया को अगर आपको मिश्रित फसल के साथ, अगर मिश्रित फसल में अगर आपको बीजना है भी,
1: जी
0: आपको ज्वार के साथ लोबिया या बाजरा के साथ अगर आपको लोबिया बीजना है,
1: जी
0: तो उससे क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले तो कि जो उसकी चारे हरे चारे की जो पौष्टिकता है वो अच्छी हो जाती है, और ज़्यादा बिजाई करते हैं ज्वार या बाजरा के साथ, तो हम इसका एक तिहाई बीज है जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं कि दो कतार तो बाजरा या ज्वार की
1: जी
0: दोनों में से एक, जिसके साथ भी आपको इसको मिश्रित फसल के रूप में आपको इसको
1: लेना
0: बोना
1: है
0: है या लेना है।
1: जी।
0: भैया आपने ज्वार ली तो दो कतार ज्वार की और एक कतार लोबिया
1: लोबिया
0: की,
1: की
0: और
1: जी
0: ऐसे ही अगर आप बाजरा के साथ लेते हो तो दो कतार बाजरा की और एक कतार लोबिया की, आप ऐसे इसको बीज सकते हो।
1: जी
0: जी सर।
1: अब डॉक्टर साहब बात यह है कि चारे वाली फसल को आमतौर पर भाई थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, भाई ये तो चारा नहीं है, इसमें तो खाद की इतनी ज़रूरत नहीं मानते,
0: जी सर।
1: लेकिन आपके हिसाब से क्या इसमें जो खाद हैं, रासायनिक खाद हैं,
0: जी सर।
1: उर्वरक हैं, उनका प्रयोग करा जाना चाहिए?
0: जी सर, अगर आपको, अगर किसान भाई अच्छी पैदावार अगर लेना चाहते हैं और अपनी जो भूमि की उर्वरता शक्ति है
1: जी
0: अगर उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको थोड़े जो अपने खाद है वो हमें एक डा उसके अंदर अपनी मिट्टी में थोड़ा डालनी पड़ेगी,
1: जी
0: ताकि एक जो पौधे की वृद्धि है, जो एक पौधे का लचीलापन है, जो उसके पत्तों का लचीलापन है वो बरकरार रहे,
1: जी
0: जो उसकी पौष्टिकता है वो बरकरार रहे, जिसे कि जो हमारे अगर हरे चारे को उनसे प्राप्त अगर हरे चारे को हमारे जानवर खाते हैं तो उनको भी वो पौष्टिकता है जो वो मिलती रहे, ताकि उनका जो दूध की मात्रा है वो बनी रहे, अच्छी हो जाए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: तो
1: एक बात और देखी गई है कि जैसा चारा हम पशुओं को खिलाते हैं
0: जी
1: वैसा ही पशु से उत्पादन हम ले पाते
0: हाँ जी
1: हैं,
0: सर
1: और ये देखा गया है कि पशुओं में बहुत सारे तत्वों की कमी है वो हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि हमने चारे वाली फसलें में सही मात्रा में उर्वरक है या ऑर्गेनिक खाद है या
0: जी
1: इस तरह की चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की, तो उसकी कमी वो पशुओं में दिखाई दे है। और ख़ास तौर से जो फास्फोरस की कमी है
0: जी
1: वो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक पशु के लिए हो जाती है,
0: जी
1: तो
0: सर
1: जितने भी सिफारशुदा मात्रा है उर्वरक की वो ज़रूर देनी चाहिए।
0: जी सर।
1: तो डॉक्टर साहब कोई सिफारशुदा कोई मात्रा है इसकी?
0: सर ज्वार के अंदर अगर हम बात करें जो हमारे खाद की सिफारिश है
1: जी
0: तो उसमें प्रति एकड़ 20 kg नाइट्रोजन या फिर हम कह सकते हैं कि 44 kg यूरिया
1: जी
0: बिजाई के टाइम प्रति एकड़ आप डालें।
1: जी
0: उसके बाद जैसे 1 महीने बाद जैसे आप पानी लगाते हो, पानी लगाने के बाद फिर 10 kg नाइट्रोजन या फिर अपना जो अगर हम कह दें कि भी 22 kg यूरिया जो हमें बिजाई उसके बाद डालना है 1 महीने बाद।
1: 1 महीने बाद पानी देने बाद
0: हाँ, पानी देने के बाद जैसे ही
1: जी
0: उसके बाद डाल दे,
1: जी
0: या फिर हम जो हमारी अगर अगर आप लेते हो ज़्यादा कटाई वाली कोई अगर आप लेते हो किस्म ज्वार की,
1: जी
0: तो उसमें आप हर कटाई के बाद 10 kg जो नाइट्रोजन है जो वो हमें डालनी है,
1: यानी
0: ताकि वो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह हो।
1: जी
0: भी जैसे हम उसका कट लेते हैं भी हम उसका एक एक कटाई करते हैं, तो उसके बाद हम पानी लगा के, पानी लगाने के बाद जैसे ही पत्तों से पानी सूख जाए ठीक है, तो हम उसमें अपना खाद है जो 10 kg नाइट्रोजन है जो हमें डाल देना चाहिए, ताकि उसकी जो जो उसकी वृद्धि है पौधे की वो बनी रहे और अच्छी हो जाए।
1: जी
0: अगर फास्फोरस की बात करें तो इसमें हमें 12 किलो जो फास्फोरस है जो वो डालनी है हमें इसके।
1: ये शुद्ध मात्रा है?
0: हाँ जी शुद्ध
1: जी।
0: मात्रा।
1: और इसके लिए खाद अगर हम कहें तो 72 किलो करीब सिंगल सुपर फास्फेट,
0: हाँ जी 72-75 के अराउंड के
1: मात्रा में
0: हाँ जी
1: देनी पड़ेगी।
0: हाँ
1: ये बिजाई के टाइम दे?
0: हाँ जी, ये बिजाई के टाइम डालनी है आपको पूरी की पूरी मात्रा इसकी
1: जी।
0: तो और यही अगर हम बाजरा के अंदर भी बात करें तो वहाँ पे भी हमें जो है 44 किलो यूरिया बिजाई के टाइम डालना है, और ऐसे ही फास्फोरस, इतना ही फास्फोरस है जो मैंने बताया, जो जितना ज्वार के अंदर उतना ही आपको बाजरा के अंदर डालना है
1: जी।
0: और लेकिन जो हमारी लोबिया है वो एक दलहनी फसल है, तो उसके अंदर हमें जो नाइट्रोजन की मात्रा जो चाहिए है वो बाकी फसलों के तुलना में कम चाहिए है,
1: जी
0: क्योंकि वो एक दलहनी फसल है, तो उसमें हम सिर्फ 10 किलो जो है सिर्फ नाइट्रोजन है जो हम बिजाई के समय पे डालते हैं,
1: 10 किलो
0: लेकिन
1: मतलब 22 किलो,
0: हाँ जी 22 किलो यूरिया
1: यूरिया
0: बिजाई के टाइम पे हम
1: बिजाई के
0: डालते
1: टाइम
0: हैं
1: पर
0: समय पे,
1: जी।
0: और 25 किलो जो फॉस्फोरस है वो आपको बिजाई के टाइम पे आपको साथ के साथ डालना है इसके अंदर।
1: जी
0: जी
1: तो ये खाद की मात्रा रहेगी।
0: जी
1: पानी का क्या कुछ हिसाब किताब रहेगा इसमें?
0: पानी का सर जैसे अगर हम ज्वार की बात करें
1: जी
0: तो ज्वार में अगर आप इसको गर्मी के दिनों में अगर बोते हो जैसे अप्रैल या मई में, तो अप्रैल में मार्च अप्रैल में तो सर 20 से 25 दिन के बाद पानी लगाना है।
1: जी
0: अगर मई का टाइम आ जाए तो उस टाइम हम थोड़ा जल्द जो उसका अंतर है वो थोड़ा कम कर देते हैं भी 15 से 20 दिन के बाद, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है।
1: जी
0: अगर हम उसको खरीफ सीजन में बोते हैं बरसात के टाइम में, तो उस टाइम हमें इतना पानी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बारिश हो जाती है।
1: जी
0: अगर फिर भी अगर ऐसा लगे कि बारिश है जो काफ़ी लंबे टाइम तक, एक बार होने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं हो रही है, तो आप आवश्यकता अनुसार पानी आप लगा सकते हो।
1: जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब कोई और ख़ास, कई बार ये होता है कि जब फसल उग रही होती है उसी समय कोई कीड़ा या कोई इस तरह की बीमारी है वो
0: जी
1: कई बार फसलों में आ जाती है, तो उसके तुरंत बचाव के लिए कोई विशेष उपाय करना
0: सर,
1: हो?
0: ज्वार के अंदर जैसे गोभ छेदक और तना छेदक नामक जो कीट हैं वो सर काफ़ी आ जाता है कई बार, तो उससे बचाव के लिए किसान भाई जो हैं जो अपने वो कार्बोरिल नामक कीटनाशक है उसका जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो उसकी अगर मात्रा की बात करें तो 400 ग्राम कार्बोरिल प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के अंदर मिला के वो उसका छिड़काव कर सकते हैं।
1: और जैसे आपने बताया गोब में खास
0: जी
1: तौर पे ध्यान देना है, भाई गोब में
0: हाँ जी
1: वो जरूर जानी चाहिए।
0: हाँ, वो उसके जो पौधे का जो जो स्प्रे जो किसान भाई करते हैं जो उसका जो गोब है अपने पौधे का उसके अंदर वो जो स्प्रे है वो उसका पानी है जो वो जरूर
1: सही
0: जाना
1: जाना चाहिए।
0: चाहिए ताकि वो कीड़े तक पहुंच जाए और वो कीड़े को ख़त्म कर दे। जी लेकिन एक इसमें बात सर ध्यान रखने की है कि जब भी आप इसका स्प्रे करें तो 21 से 22 दिन तक किसान भाई हरे चारे को पशुओं को ना खिलाएं।
1: ना खिलाओ
0: हाँ जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो सिफारिशशुदा किस्म है वो हम लें, और आपने अगर मिलमा खेती करनी है
0: हाँ जी
1: तो जिस तरह आपने बताया भाई, दो खूड ज्वार के या बाजरा के लेके उसमें एक खूड है वो हमने लोबिया का
0: लोबिया
1: लेना
0: का
1: है, और खाद का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि हमारे पशुओं में किसी प्रकार की कमी ना
0: ना हो
1: पावे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर कन्नौज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, धन्यवाद आपका।
2: बेहद अश्विनी भाइयों ने बातचीत और भाई ई भाइयों का कराओगे मनोरंजन, भाइयों को रागनी सुनवाओगे, गायक कलाकार होंगे सूबे लाल सांगी।
3: नारी सू मेरा हाथ।

ਕਰ ਸੋਲਾ ਸ਼ੰਗਾਰ ਨਾਰ ਤੇਰਾ ਮਲਾਇਓ ਬਾਣਾ

0: नहूर मेरा लहू चढ़ावे मगना।
1: बया तश्मी भैया ने रागनी, गायक कलाकार थे सुबेलाल संगी। और वे देखो बारिश हुई है किते किते, तो मच्छर माखी इतना ही थोड़ा फर्क था, तो ये भी थोड़े बढ़ेंगे। इसमें हमने अपने पशुओं का भी, छोटे बच्चे हैं जो उनका भी, वो सही तरीके से हमने ध्यान रखना है भाई। मच्छरदानी का प्रयोग हमने करना पड़ेगा, और भाई जो मच्छरों तक बीमारी हैं उन तक हम पहले सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे। अपने जो छोटे बच्चे हैं वह उन्हें बचाओगे, एक उनके थोड़े खान पान पर ध्यान देंगे। छोटे बच्चे हैं उन्हें घर का है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसमें घर का बना बना जो खाना है वो बच्चों देने की कोशिश करें। बाहर तक जो फास्ट फूड और ये पिज्जे बर्गर इनके जो ढाड़े पड़ जाएँ बच्चे, वो बड़े दिक्कत में आवे, फिर बीमारी भी बहुत फैले हैं। तो घर पर बना उड़े जितना भी अपना सादा खाना, ठंडा खाना, वो बढ़िया रहे, इससे बच्चे स्वस्थ भी रहें। इसी प्रकार पशुओं की बात करें तो पशुओं में भी भाई जितना उसके घर अपना जो चारा है संतुलित चारा दाना घर पर बना कर पशुओं ने वो देंगे तो बढ़िया रहेगा। ख़ास तौर पर जो अपने दुधारू पशु हैं या कामकाजी तो आजकल नहीं रह रहे हैं, उनने सारे के सारे पशु, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, खनिज मिश्रण वो ज़रूर दें। 50 ग्राम खनिज मिश्रण जो बड़ा पशु है उसको हमने रोज़ाना देना चाहिए, ताकि पशु स्वस्थ रहे और जो जो उसमें उन्हें ज़रूरत की चीज़ हैं वो उसमें तो मिलती रहे, जो उसके शरीर ने विटामिन की ज़रूरत पड़े वह सारी की सारी उन तक पूर्ति होती रहे। तो खनिज मिश्रण का ज़रूर अपने जो पशुधन है उसके चारे में ज़रूर मिश्रण करें। भाई नमक का डला पशुआती वो ज़रूर खोर में रख दें, या फिर जो चारा दाना हम बनावें उसमें मिलावें, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। बात तो बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन काम आने की हैं, भाई बड़ा फायदा देने वाली है। तो इन के साथ ये देख लिया घड़ी का ना, कृषि जगत कार्यक्रम का तो समय हुआ हड़े समाप्त। आगे सुनेंगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार।
2: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आकाशवाणी का रोहतक केंद्र और आप सुनोगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाई ग्रामीण संसार में आज बारी है आपकी पसंद की, तो भाई कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मास्टर सतबीर सिंह भैंसवाड़िया और साथियों की गायी उड़ रागनीते पसंद भेजनिया। आप सब गांव अजायब जिला रोहतक से पसंद भेजनिया भाई हैं ऋषभ देवनैन, सुबेदार मामन सिंह, सावित्री देवी, रिया, सरस, नरेंद्र, दवित, अंजलि, सागर, वीरेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये चिट्ठिया एक गांव कायला से पसंद भेजने हैं प्रकाशन बोकल, पुनीत कुमार, अजीत सिंह, संदीप, सक्षम, मुन्नीलाल, रामकुमार, प्रिंस, लक्ष्मीनारायण पोपली। ये चिट्ठिया ये है गांव लुवारी जाटू बिवाणी ते पसंद भेजने हैं रामफुल शर्मा, हरिराम शर्मा, हरकिशन शर्मा, साधुराम, मदन सिंह, नौरंग, हरिराम प्रजापत, आवा सिंह बरसीवाल, शेरा, रामदारी शर्मा। गाँव शिवाड़ा बिवाणी से दयाराम शर्मा, जापान शर्मा, ऋषि और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये चिट्ठी आई है अपने द्वारा आदर्श नगर मलोट पंजाब ते पसंद भेजनी है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। ये चिट्ठी आई है गांव चौधरीवास से पसंद भेजनी है राजू अग्रवाल, केशव, अलक, चरणदास, रेखा। ये चिट्ठी आई है रावर करनाल से पसंद भेजनी है ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। दादरी गेट भिवानी से पसंद भेजने भाई हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल, कुणाल और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से पसंद भेजने भाई हैं बादल सिंह गिल, कमलेश गिल, टीनू गिल, प्रीति गिल, डॉक्टर अंकित गिल और डॉक्टर वाणिका। गांव केड़ंगा से हैं मास्टर सुंदरपाल कौशिक, देबू, परी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये चिट्ठी आई है अपने दौरे एकता कॉलोनी रोहतक से पसंद भेजने हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये चिट्ठी आई है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल ते पसंद भेजनिया है गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर पांडा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका विर्क, बलविंदर विर्क, जयतेक, हरदेव और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो सुनो भी अपनी पसंद पे मास्टर सतबीर सिंह भैंसवाड़िया साथियों की गायुड़ ये रागनी।

तार धरे मन धर्म की चादर ओढ़ी।

कार्यक्रम की अगली बैट रहेगी नरेंद्र डी गिलिया और साथियों की गाई और रागनी की। पसंद भेजनी है आप सब खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश शिवानीवाल, सौरभ, रमेश वर्मा। जिला जींद में गांव दोरड़ से हैं श्री राम चहल, वीर सिंह चहल, मास्टर ओम बलवान, पंडित रामेश्वर, पंडित महासिंह, पंडित श्यामलाल, धर्मचंद प्रजापत, दयाकिशन बैरागी, मास्टर रघुवीर शर्मा और इनके बहुत सारे साथी। गांव लुदेसर से हैं पप्पूराम गाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका देवी, साक्षी, रुचिका और इनके बहुत सारे साथी। लोकू कॉलोनी लुआरू से पसंद भेजे हैं बिलू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार और लक्ष्मी देवी। गांव मटौड़ जिला कैथल से हैं रामदिया, नीलम्बोत, अजय, विजय, तमन्ना, उद्दमोर और इनके बहुत सारे साथी। गांव बिचपड़ी से अरिराम पूनिया, धर्मचंद पूनिया, अवासिंह, चांदीराम टेलर मास्टर, साथ में है जय भगवान वत्स, डॉक्टर सुरेश वत्स, बलबीर और नरेश। गोवाणा से हैं जयप्रकाश, सत्यवान मुंशी, करमबीर, नरेश, सुमेंद्र, समुंदर, श्री भगवान, हरिओम शर्मा, रोहतास और राकेश। गांव ग्यासरी उर्फ गादी से हैं कांशीराम दलाल, बलदेव आर्य, रामपाल, दयानंद, धर्मवीर और इनका समस्त परिवार। शिमाणका से हैं रामवीर बैरागी, अवासिंग दलाल, दिलबाग नंबरदार और इनके बहुत सारे साथी। आदर्श गांव बलियाली हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश राणी, प्रवीण कुमार, ममता, कमल कुमार, गर्विश, तमन्ना और इनके बहुत सारे साथी। तो सुनो अपनी पसंद पे नरेंद्र डी गिलिया और साथियों की गायुड़ ये रागनी।

0: और कार्यक्रम की अगली बैठ रहेगी राजकिशन अगवानपुरिया और साथियों की गाई और रागनी की। पसंद भेजनिया आप सब गांव जाखोद से समुदाय खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरपाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और इनके बहुत सारे साथी। गांव चुलाना जिला रोहतक से हैं मास्टर रामचंद्र रोहज, रामफल, सुरजा, हेमचंद्र रोहज और इनके बहुत सारे साथी। महेंद्रगढ़ से हैं प्रकाश अंबावत और इनका समस्त परिवार। गांव चौटाला से दारा पंडित संजय शर्मा, दीवांशु जोशी, बुलबुल, पुनीत पंचारिया। गांव जिंजर कलां से हैं महाशय सतबीर शर्मा, कौशल्या बाला और इनका समस्त परिवार। कस्बा जुलाना से पंडित महावीर शास्त्री और इनका समस्त परिवार। गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार, सौरभ कुमार। गांव लाठ जिला सोनीपत से पसंद भेजनिया है नमन कौशिक, केशव कौशिक, अनवी अवी, पंडित कपूर सिंह कौशिक, कृष्ण कुमार, नाना फौजी, राजेंद्र, रामफल, कृष्ण कुमार, जय भगवान, मांगेराम प्रजापत और खेतुराम। महेंद्रगढ़ से हैं विकास गांधी, ममता गांधी, वंश, दिया, नोनू, शगुन, विक्की गांधी। दुर्गा कॉलोनी आसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, मन्नू, सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू। गांव सागौन हरियाणा से पसंद भेजनिया हैं पवन, बलजीत सरपंच, भूप मास्टर और इनके बहुत सारे साथी। लाल मस्जिद भिवानी से संयम पोपली, दृश्य, समर, परवीन, अमित, ज्योति, तुलसी, गीता रानी, दीक्षा, निश्चित रहेजा। अड़ेवा जींद से पसंद भेजनिया है नरेश लोहान, राजकुमार लोहान, कविराज रामकुमार शास्त्री, जोगेंद्र लोहान, रणदीप कश्यप, सतबीर पांचाल और इनका समस्त परिवार। नंदगढ़ से पसंद भेजना है मोहन दलाल, संजय दलाल, राजेश, रोहित, दीपांशु। गुड्डा गोहाना से है मैनपाल नागर, साहिल नागर, अरविंद शर्मा, श्री भगवान। भाणा ब्राह्मणान से हैं मेघराज शर्मा और इनका समस्त परिवार। सिरसल से हैं पवन शर्मा, बाला शर्मा और इनका समस्त परिवार। माधबनपाना जोजू कला से हैं विनोद कुमार प्रजापत, अंकित, प्रिया, तनिषा, दीपक, अनिल, सोनू। झज्जर से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा, मयंक, रजत भाटिया और इनका समस्त परिवार। तो सुनो अपनी पसंद पे राजकिशन अगवानपुरिया और साथियों की गायी ये रागनी।
1: ओए बोल सुनिया जब साधु का खटका लगा गात के मां।

और वह राधकृष्ण गवानप्रिया व साथियों की गाई उड़ी श्रागनी के साथ है। ईब देख लिया गड़ीका न्या कार्यक्रम का समय हुआ समाप्त। बलजीत भाई ने दें इजाजत, सारे बाण भाइया ने राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज ये अंक आप सुन रहे हैं डॉक्टर भूमिका शर्मा के साथ। कार्यक्रम में पहला गीत आप सुनेंगे पतंगा फिल्म से, आवाज़ शमशाद बेगम की और चित्कार की। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। फिल्म पतंगा।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

अभी आपने सुना गीत पतंगा फिल्म से, आवाज़ थी शमशाद बेगम और चित्रकार की। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे श्री 420 फिल्म से, आवाज़ मुकेश और साथियों की, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

अभी आपने सुना गया श्री 420 फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत आंखें फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी।

0: कभी कभी।
1: इस गीत के बाद अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की जादुई आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत फिल्म ज्योति से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत है अमर प्रेम फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की। गीतकार है आनंद बख्शी साहब, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अमर प्रेम फिल्म के इस गीत के बाद अगला गीत आप सुनेंगे अर्थ फिल्म से। आवाज़ जगजीत सिंह की, गीतकार हैं कैफी आज़मी।

0: सुना गीत अर्थ फिल्म से आवाज जगजीत सिंह की। कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे प्रेम पुजारी फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीतकार हैं गोपाल दास नीरज, संगीतकार एस डी बर्मन।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

अभी आपने गीत सुना प्रेम पुजारी फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत आप बैराग फिल्म से सुनेंगे, आवाज लता मंगेशकर की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार आनंद बख्शी साहब।

अभी आपने सुना गीत बैराग फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत है कर्ज फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, आशा भोसले और साथियों की, गीतकार आनंद बख्शी साहब, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में आज के लिए अंतिम गीत आप सुनेंगे आनंद फिल्म से, आवाज मुकेश की, गीतकार हैं गुलजार साहब।
1: मैंने

अभी आपने सुना मुकेश की जादुई आवाज़ में आनंद फिल्म का गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत आज के लिए संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार सुरेंद्र शर्मा। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। एक जरूरी सूचना, कल प्रातः 11 बजे प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम मन की बात, समय निकालकर अवश्य सुने। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले कि केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रोजा फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम में अगला गीत है चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की मधुर आवाज में। फिल्म का नाम रोजा, संगीतकार एआर रहमान।

एक फिल्म से कार्यक्रम में आज आपने सुने रोजा फिल्म के कुछ गीत। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: पंद्रह अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने, केसरी और

0: चार्टर शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे, और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वो है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना, और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं, बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया, बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की, स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
4: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं। हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है, जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आईटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आईटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
5: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने ये कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
6: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
5: अच्छा,
6: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की, स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया, एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली, तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
5: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
6: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। देखिए, हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
5: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
4: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम। जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
5: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
4: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
4: लोपदगामिनी,
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
4: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखे। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं, क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
6: मैं, मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
4: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना, सही में बहुत डाइवर्स है।
5: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है, तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
4: बहुत ही मजेदार होता है।
5: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
6: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है, वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है, और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
5: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज, मतलब जैसे ट्राइपॉड,
6: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
4: कॉम्पैक्ट रखो।
6: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
5: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है, फॉलोअर्स और सक्सेस?
4: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है, जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है, कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए, कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके, और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
6: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट, एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
1: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
7: जी धन्यवाद।
1: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
7: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
1: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
7: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उस पे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
1: जी
7: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है, तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं? अगर इग्नू की बात करें तो
7: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है। सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते, मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरिंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है।
8: तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे She presents Raag Maru Bihag. The first is Vilambit composition set to Ektal with the lyrics Maan Taj Deho Pyare. This is followed by a Madhyalay composition set to Teental with the lyrics Mano Na Jiera Mora. She concludes this Raag with a Drut composition set to Ektal with the lyrics Mano Na Hi Tumri Baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिसनिंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा।

0: कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।